सूरज की किरणों से चमके सारा जहां, इंस्पायर एफएम की लहरों से महके सारा समा, रहे आपके साथ यहां और वहां।

0: जब भी आपके दरवाजे पे कोई दस्तक हो तो छोटे बच्चों को दरवाजा खोलने से मना करें और खुद भी दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: Your new full-time community radio station, Inspire FM. I have

0: ट्रूथ क्या है उसके बारे में बात करते रहे और सब्र की ताकीद, जब तक वो चीज़ होती नहीं है आप साथ साथ सब्र करते जाएंगे। मुझसे अभी कल किसी ने पूछा, आपको कैसा लगता है जब इस किस्म की कोई बात आती है तो लोग सरप्राइजिंग किस्म के ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान में बात आ रही है तो कई लोग क्या कुछ कह रहे हैं। मैं कहा मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे तो रियलिटी चेक मिलता रहता, बड़ी अच्छी बात, मुझे ज़रा दुख नहीं होता किसने क्या कहा, किससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं। जितना आपको रियलिटी चेक मिलेगा उतना आप अपने आप को एडजस्ट करेंगे, उतना आप अपना कंपस ठीक करेंगे, उतना आप अपना हिसाब किताब रखेंगे, उतना अपने आप पे इंसार करेंगे और उतना यू आर गोइंग टू पुट ऑल योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स। कोई बात नहीं, कोई बात किसी तरीके से भी कोई बात नहीं। माँ बाप छोड़ जाते हैं कोई बात नहीं, बहन भाई छोड़े कोई बात नहीं, कुछ कोई भी कभी भी छोड़ जाता है, छोड़ सकता है, उसको फ्री मिल मिली है। आप नाराज़ होते हैं हो जाए, गुस्सा करते हैं करें, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। लेकिन उनकी मर्ज़ी आप ये हो नहीं, मतलब आप उन पर अपनी मर्ज़ी नहीं थोप सकते, बस यही इंसान है और यही रब के कानून है और इसी के बीच में से हमने निकलना है।
1: आपको कभी इस बात का डर होता है कि कोई छोड़ के चले जाएगा जो जो आपके बहुत क्लोज हैं?
0: हाँ, पहले बहुत होता था, फिर जब वो छोड़ गए या वो मर गए तो वो भी ख़त्म हो गया। देखें, हम में से ना साइंस ये बताती है, नंबर्स ये बताते हैं कि हम जिंदगी में जिन जिन चीज़ों से डरते रहते हैं हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और वो होता ही नहीं। तो एक बात और, ये डर कब होते हैं जी? ये डर तब होते हैं, ये किसी और दिन सवाल पूछेगा, आज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ठीक है, वीडियो की, लेकिन ऑडियो हो रही है। ये जब तक हम इंसान अपना, जो बंदा भी अपना, हाँ, मैं जब तक अपना होमवर्क नहीं करता था तब तक मैं डरता था, जब तक मैंने 100% सिंसेरिटी से काम नहीं किया था, जब तक मैं लोगों को सच नहीं बता सकता था, जब तक वो डिज़र्व नहीं करते थे और उनको मैं दे रहा था, अब जब वो नहीं डिज़र्व करते मैं नहीं देता, मैं रोक के उसको दे देता हूँ जो डिज़र्व करता है, चाहे वो कोई भी हो। अब पहले मैं बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर देता, कहता था कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब मैं सबको बताता हूँ, हर बंदे को, मैंने अपने माँ बाप से लेकर हर बंदे को उनकी सारी खराबियाँ सारी बुराइयाँ बताई हैं, अपनी भी खराबियाँ बुराइयाँ मैंने हर बंदे को बताई, क्योंकि अब मुझे इस बात का, जब तक आप डरते रहेंगे ना वो, तब वो चीज़ें, यू मेक दीज थिंग्स हैपन बिकॉज इट्स इन योर हेड, यू मैनिफेस्ट दीज थिंग्स। अगर आप डरते रहेंगे तो वो ही डर आपके सामने खड़े होते रहेंगे, जब आप डर से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा लोग छोड़ते नहीं, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, समझ रहे हैं? मैं जो पहले डरता था कि लोग मुझे छोड़ जाएंगे, फलां छोड़ जाएंगे, फैमिली छोड़ जाएगी, फलां छोड़ जाएगी, मैं अलहदा से जिधर भी जाता हूँ मैं एक अलहदा से एक छोटा सी जगह बनाता हूँ जहाँ मैं आराम से जी सकूँ, जहाँ मुझे लोग बॉदर ना करें, क्योंकि हर बंदा मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, खाने पे लाना चाहता है, फलां करना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, और मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता। मैं कल इतने सालों के बाद मीट एंड ग्रीट पे गया हूँ, मैं कभी नहीं जाता, मुझ शान ने रिक्वेस्ट की थी और शम्स एक शो आने वाला है और मुझे शम्स तबरेज़ और मौलाना रूम में इंटरेस्ट है, तो मुझे पता था उसमें कोई ख़ास चीज़ वहाँ मुझे नहीं मिलनी, बट फिर भी मैं गया और मैं देखना चाहता था कि क्रिएटिवली कैसे वो करते हैं। तो उन्होंने वही, न तरसा न यहूदम न मुसलमान चितदबीर मुसलमाना, ये उनकी एक बहुत मशहूर एक नज़म है कि कुछ तो करो ऐ मुसलमानों, कि मुझे तो मुझे बताओ, जो फिर बाद में बुल्ले शाह ने भी की थी कि ना मैं यहूदी हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं क्रिश्चियन हूँ, कौन हूँ मैं, ना मैं मिट्टी से बना हूँ, ना मैं पानी से बना हूँ, कौन हूँ मैं। तो इस तरह की एक बहुत खूबसूरत, तो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, उसके साथ कोरियोग्राफी वगैरह बहुत अच्छी थी। तो मुझे अगर मुझे लोगों में जाने का शौक़ होता तो मुझे बहुत लोग जानते हैं, मैं बहुत कम कहीं बाहर जाता हूँ और सिर्फ वहाँ जाता हूँ जहाँ मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, या कुछ रिश्ते हैं जो इतने सालों से हैं, या मैं फ़ोन भी सिर्फ उन्हीं लोगों का उठाता हूँ जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, या बाकी लोगों के साथ, और मैं जो काम अपना कर रहा होता हूँ ये सारी चीज़ें मेरी एनर्जी डिप्लीटिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा है काम के ऊपर जो मुझे करना है, और जब मैं करने बैठूँगा तो मुझे पता है मैं 2-3 दिन में सारा का सारा काम ख़त्म कर दूँगा, लेकिन वो बैठने में कभी कभी महीने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, एक पल में वहाँ से हम उठे, एक पल में वहाँ से हम उठे, बैठने में जहाँ जमाने लगे। तो कई लोग आपकी ज़िंदगी में जब इल्म और अकल से बहरावर नहीं होते ना, बहरामंद नहीं होते, बेबहरा होते हैं, उनको नहीं पता होता, तो वो कभी कभी जितने रिफाइंड और ज़ौक आपका बढ़ जाता है ना, जहाँ पे लोगों को बिठाने में, संभाल के रखने में, जिन रिश्तों को सालों लग जाते हैं, किसी आदमी की हुई बात या किया हुआ एक्शन एकदम आदमी को आपकी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए कम

0: कम में बहुत है, थोड़ा बहुत हो जाता है, कम इंटरेक्शन रखें। देने वाले बन सकते हैं तो दें ज़्यादा, लें लोगों से कम। लोग बहुत कुछ बाय द वे आपको देना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले वो आपसे क्या लेना चाहते हैं उनको पता ही नहीं, और जो वो लेना चाहते हैं वो आप एक हद से आगे दे ही नहीं सकते। ये सब जानने के बाद, इतने रिश्ते ज़िंदगी में बनाने के बाद, मेरे ऐसे ऐसे लोगों से रिश्ते हैं जो मुझे खुद बताते हैं, आपको पता है हम मरजाएंगे। मैंने कहा हाँ जी, तो क्यों मुझे बताते रहते हो भाई, आपको पता है हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम फलां, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। आप उसी रब के बंदे हैं जिसका मैं हूं। आप अमल क्या करते हैं, आप मुंह से जो बोलते हैं उस पर रियलिटी में रह रहे हैं कि नहीं, आप जो मुझे कह रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं। मेरे साथ चलना एक मुश्किल काम है, आप चल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कल कोई आपका प्यारा आ जाएगा वो आपको ले जाएगा, कल आपका मज़हब आ जाएगा वो आपको ले जाएगा, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि तमाम मज़ाहिब एक मज़हब के ऊपर खड़े हैं, वो है इंसानियत, और उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। और बाकी सारे रिश्ते भूल जाएंगे आपको, ये सब गायब हो जाते हैं। यही माँ बाप आपसे दुखी हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, इनको आप पैसे ना भिजवाएं, इनकी मर्ज़ी ना करें, फिर देखें। यही बच्चे एक वक्त के बाद, मैं कितने ही बच्चों को जानता हूँ, ना आपसे मिलना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो सारे की सारी ज़ाया हो जाएगी, और खुदा इसी दुनिया में आपको ये सब करके भी दिखा देगा, क्योंकि हम इस काम के लिए परमानेंट रहने के लिए आए ही नहीं, हज़ार साल के लिए थोड़ी आए हम। ये हमें लगता है हम इतने पैसे जमा करें जैसे हज़ार साल के लिए आए, हमें लगता है हम ये बचा लेंगे वो बचा लेंगे, आप कुछ भी नहीं बचा सकते। जब तक रब कहता है तुम दोनों जहानों के ख़जाने भी लुटा दो, तो दो इंसानों के बीच में मोहब्बत नहीं, दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते, वो मैं करता हूँ। तो अगर वो है तो वो रहेगी, दुश्मन भी है तो रहेगी, वो इज्जत करेगा आपकी। नहीं है और आपने नहीं कमाई तो वो आपकी नहीं। दो चीज़ें, एक तो यह आपको कमानी पड़ती है चीज़, कोई भी चीज़ कमानी पड़ती है आपको, कुछ भी वैसे नहीं मिलता, कभी आप इंटेंशनली कमा लेते हैं, कभी अनइंटेंशनली भी आप कमा जाते हैं, और दूसरा वो चीज़ आपको गिफ्ट में मिलती है। दो चीज़ों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया में कुछ भी और उठाने का, और वो जो गिफ्ट में मिला है उसके साथ एक टेस्ट है, वो वापस भी लिया जा सकता है, और जो मेहनत से कमाया है वो भी वापस जा सकता है। लेकिन क्योंकि आपने कमाया है, आपको पता है मैं दोबारा कमा लूँगा, दोबारा बना लूँगा। मैं बोर तो नहीं कर रहे हम आपको?
1: नहीं नहीं आज़ादला, बिल्कुल भी नहीं है। तो आज़ादला, क्या अनकंडीशनल लव फिर एग्जिस्ट करती है कि नहीं?
0: देखिए, अनकंडीशनल लव जो है ना, उसको एग्जिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इंसान होने के नाते। कंडीशनल लव भी अगर हम लव भी कर लेना, हम कंडीशनल भी, देखिए माँ बच्चे को कितना ख्याल रखती है, जब वो जिस्म का हिस्सा होता है तब भी ख्याल रखती है, जब वो दुनिया में आता है उस वक्त भी ख्याल रखती है, उसका यही काम है। और बच्चा आगे से उसके साथ अगर कुछ उल्टा सीधा करेगा, बहुत कुछ, बहुत बड़ी बड़ी ज्यादतियाँ भी करते हैं, बट कर जाती है वो बर्दाश्त, कोई बात नहीं, क्योंकि असल में लव है देने का नाम, लेना लूना कुछ नहीं होता। मोहब्बत आपके अंदर एक चीज़ है, जैसे आपके अंदर एक एनर्जी है तो है, जैसे आपके अंदर ऑनेस्टी है तो है, जैसे आपके अंदर अच्छाई है तो है। अगर है तो फिर आपको ये कहीं ना कहीं देनी है, दिखानी है, दिखेगी ये। जैसे बेवकूफ़ी नहीं छुप सकती ना, वैसे अकलमंदी भी नहीं छुप सकती, आप जो मर्ज़ी कर लें। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत, अनकंडीशनल मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं। आपका एक दोस्त है आपके साथ अच्छे हैं, वो अगर आपके साथ अच्छा है आगे से तो बुरी बात है ये? कंडीशंस में भी आ जाए कोई बात नहीं, इंसान की जितनी मोहब्बत है, क्योंकि इंसान जो है ना, रब अनकंडीशनल मोहब्बत कर सकता है क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड विजडम है, अनलिमिटेड सब कुछ है। इंसान के पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड विजडम है, लिमिटेड सब कुछ है। अगर उसमें वो ट्रांजैक्शनल भी चीज़ें करते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ दे लेके है तो कोई बात नहीं। माँ बेटे का रिश्ता भी देने लेने पे ही है, दोस्तों का भी देने लेने पे है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ आप नहीं खा सकते, आपको शेयर करना है। सब कुछ आप नहीं जान सकते, आपको शेयर करना है। ये कंडीशन बहुत अच्छी चीज़ है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। कंडीशंस के साथ ही पूरी कर लो भाई, समझ रही हैं? जो वाउज किए हैं वही पूरे कर लो, जो मुंह से बोला है वही पूरे कर लो। लोग वही पूरे नहीं कर रहे होते, वो मान ही नहीं रहे होते, ये तो बात ही नहीं थी। तो फिर शायर बेचारा कहता है जिसने चाहा है खुद को चाहा है, और खुद को कैसे चाहा है कि आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, आपकी कोई से ही नहीं है। आप जब बात करते हैं, दुनिया में इतने बुरे हालात हैं दुनिया के, आप जब कोई बात करते हैं ना, मुझे पता है कैसे पता चलता है एक आदमी होश में है कि नहीं। मैं जब उससे बात करता हूँ, उसको मुझे दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा कहना पड़े, मैं समझ कोई बात नहीं खैर है, लेकिन जब उसको मुझे 50-100 दफ़ा कहना पड़े तो उसका मतलब है अब ये कौंड हो चुका है इसका, ये कभी भी वापस नहीं आएगा। ये सुमन बुकमन हुमयन वाली बात, ये ये बहरे हैं से शुरू होता है क्योंकि सुन नहीं रहे, खुदा किताब में भी सीक्वेंस में बताता है, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और ये कभी वापस नहीं आएंगे। तो फिर आदमी कोशिश करता रहता है क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो अच्छी बात होती है उस बंदे में। आप जीरो तो नहीं कर सकते सारा कुछ ना, पार्टली भी अगर आपको कुछ अच्छाई मिल जाती है तो पार्टली को यूज़ करके आपने उससे होल बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि रब ने ये सब चीज़ें ऐसी रखी हैं, लोगों के अंदर चैलेंजेस रखे हैं। सबको अकल आ जाए तो आपको लगता है हम और आप बात कर रहे होते आज मतलब इसका वो मतलब नहीं जवाब है, इसका मतलब ये है, मेरा दोस्त था वो कहता था भाई तू ऐसे ही कलपता रहता है, अगर सबको ये सारी बातें समझ आ जाए तो तुझे कौन सुनेगा। तो उसको आगे मैं कहता हूँ मैं तो अकलमंद भी नहीं हूँ, तू कहता है खुद सोच तू अकलमंद भी नहीं है तो तुझे सुनने के लिए लोग आ जाते हैं। तो बाकी तो मैं इस ज़माने में, और मैंने क्यों कहा तू बेवकूफ़ों की बातें कर रहा है, इस ज़माने में जिसके जितने लिसनर है, जिसमें जितनी कम अकल है उसके उतने ज़्यादा लिसनर है, बिकॉज वो ज़्यादा फैसिनेटिंग है।
1: आप पे तो बहुत अक्ल है माशाल्लाह,
0: बहुत अक्ल मेरे, ये अक्ल रोज करनी पड़ती है, ये अक्ल रोज कमानी पड़ती है, ये है नहीं। रोज सुबह आप उठते हैं, रोज सुबह जैसे आपको आज के दिन कमाना पड़ता है, रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो आप अगर रियाज करते हैं, ये किसी की मीरास नहीं है, समझ रही हैं। मैंने ऐसे ऐसे अक्लमंदों को ऐसी ऐसी बेवकूफियां करते देखा, इसीलिए कहते हैं ना ये जो मोहब्बत का नशा है अकलमंद और बेवकूफ़ों को एक साथ चढ़ता है। अकल किसी की मीरास नहीं है, किसी का हक नहीं है, ये चॉइसेस हैं। आप वो चॉइसेस करते रहेंगे लंबे अरसे के लिए, आप की अकलमंदी दिखती जाएगी, आप वो गलत चॉइसेस करते जाएंगे आपकी बेवकूफ़ी दिखती जाएगी। इनको अगर ऐसे देखेंगे तो इंसान अपने आप से बाहर निकल आएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी ये बात सुन के या किसी और बंदे की बात सुन के मेरे दिमाग में किसी दिन ये बात आ जाए मैं अकलमंद हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैं कुछ ऐसी चीज़ करता हूँ, कोई ऐसी बात कहता हूँ, कुछ करता हूँ, वो खुद बहुत काफूर हो जाता है कि नहीं भाई ये तो हर थॉट के ऊपर एक अकल की थॉट है एक बेवकूफ़ी की, मैं उठा कौन सी रहा हूँ, अकल के रिश्ते हैं बेवकूफ़ी के रिश्ते, मैं उठा कौन से रहा हूँ। रियलिटी किन चीज़ों के अंदर है, ये हर वक्त ये टेस्ट चलता रहता है। तो कभी आप अकल की चीज़ उठा लेंगे, कभी आप बेवकूफ़ी की चीज़ उठा लेंगे और करेंगे, लेकिन ज़्यादातर आप हाउ इंक्लाइन, मिलान किस तरफ आपका ज़्यादा है। मिलान बड़ा अच्छा लफ्ज़ नहीं है, है ना, कितना अच्छा सा लग रहा है मिलान, इसका मतलब है इंक्लिनेशन टुवर्ड समथिंग, नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड समथिंग, बड़े अरसे के बाद आए।
1: लेकिन आजादा ने एक इसी के साथ एक क्वेश्चन, जैसे आजकल जैसे मैं आपको अपना बताऊं, जब हम मुख्तलिफ बात लोगों की बातें सुनते हैं तो हर एक की बात को कहीं कहीं ना कहीं कुछ ठीक लग रहा होता है, तो बंदा ये कैसे डिसाइड करे कि आखिर मैं कौन हूँ, मुझे इसकी बात भी ठीक लग रही है, इसकी भी ठीक लग रही है, तो मैं खुद क्या हूँ, ये डिसीजन आप कैसे ले।
0: नहीं देखें, इसकी बात अच्छी लग रही है, उसकी बात अच्छी लग रही है, इसकी बात ठीक लग रही है, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जो डिफरेंट परस्पेक्टिव लेता है। अगर मैं बायस नहीं हूँ और मैं आई एम रूटेड इन रियलिटी और मैं लॉज ऑफ नेचर के साथ चल रहा हूँ और मैं प्रेजुडिस्ड भी नहीं हूँ, तो मुझे हर बंदे का पर्सपेक्टिव लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद सोच लें, समझ लें, और एक बात, दो बातें याद रखिएगा, मशवरा अगर है तो किससे ले रहे हैं, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो उससे मशवरा नहीं बनता, एक बात, लेना नहीं बनता, ठीक। ये समझना बहुत ज़रूरी है, हमें पता नहीं है कौन मशवरे के काबिल है और कौन नहीं है, और अगर कोई वैसे आपको कोई अच्छी बात बता रहा है तो अच्छी बात, तो हर समय में अच्छी बात, तो ये पता करना। और दूसरा, वो अगर क्वालिफाइड ही नहीं है कोई बंदा तो आप बेशक उसकी बात ना माने। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन आल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, innal ghadaba yufsidu al-imana kama yufsidu as-sabr al-asal. That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that No Comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
8: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
9: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Central Bedfordshire College is now enrolling for accredited adult courses starting in September 2026. We're offering childcare, ESOL, English and maths, employability and teaching assistant courses in Luton. Visit us at the Dallow Road Centre, LU11TB, or the Thrive Hub on Upper George Street, LU12QX, every Wednesday between 9am and 3pm from the 26th of August, and we can help you apply. Apply now to support your future career prospects by gaining lifelong qualifications.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
12: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
13: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: और अगर दिल मान रहा है किसी चीज़ के दिल बड़ी कमाल चीज़ है हमें दिल को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया इसलिए रब कहता है मैं दिल बदल देता हूँ उसने कभी नहीं कहा मैं दिमाग बदल देता हूँ ठीक है, अभी साइंस बता रही है ना न्यूरॉन्स भी हैं और ये है और वो है और वो, फिर बहुत सारे और रीजंस भी बता रहे हैं कि जी उसका इससे ताल्लुक है, उसका उससे ताल्लुक है, लेकिन रब का दिल पे बहुत जोर है। इसकी मतलब इमोशनल साइड भी इंसान की हो सकती है जो बहुत पावरफुल है, उसको हमने वीक कर दिया है। कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं वो ज़िंदगी को बार बार उठ के खड़ा होके बना लेते हैं, बिकॉज जो आग है इमोशंस की, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत कमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर कभी कभी आपको लोगों की बात लगती है, और एक और चीज़ याद रखिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है बंदे का जिसकी आप बात सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आज तक मैंने कितने लोगों के बारे में, मैं आपको मज़े की एक बात बताता हूँ। पिछले मेरा एक दोस्त है, पिछले दिनों वो उसने अपनी हैबिट ठीक कर रहा है और बहुत सारे डिबैकल्स उसने लाइफ के देखे हैं, बहुत ऊंच नीच हुई है क्योंकि उसका बबल कभी भी सेंटर नहीं था, ही वॉज नेवर अ बैलेंस्ड पर्सन, बच स्कूल के ज़माने का मेरा दोस्त। तो उसने कहा जी मैं ये शुरू करना चाहता हूँ, ये कर, काफ़ी सालों से कह रहा था। मैंने पहले बहुत जोर दिया, फिर मैं पीछे हट गया, मैंने कहा जब करना होगा अपने वक्त पे करेगा। फिर एक वक्त आया जब उसने सारी चीज़ें आजमा ली, सारे दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए, जब उसका कुछ नहीं हुआ तो देन ही स्टार्टेड टू चेंज, एंड देन कुछ चीज़ें उसने, उसको मैंने कहा था जब तक ये जगह नहीं छोड़ोगे, ये ऐसे नहीं करोगे वैसे नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, एंड फाइनली ही मेड, बहुत मुश्किल था वो चेंज करना बट उसने किया, कमेंडेबल काम है। शायद मैं उसकी जगह होता ना कर पाता, लेकिन उसने किया। तो अब उसने कुछ चीज़ें करना शुरू, खाने पीने पहले शुरू किए, जहन बनाना शुरू किया, मोटिवेशन के लिए चीज़ें उसने अपनी शुरू की, अब वो बहुत बेहतर, जो 3 सालों में जो बर्बाद हुआ था वो दो तीन महीने में वो सारी बर्बादी वापस आ चुकी है, इतना बेहतर उसकी ज़िंदगी हो चुकी। मेहरबानी है उसकी, उसने समझा और माना, और जो कुछ उसके बाद उसने किया तो उसी ने ना, आप क्या कह सकते। तो वो उसने कहा जी मैं अब ये खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ। तो उसने कहा मैं फ़लाँ, मैंने तेरे कहने पर वो भी, मैंने उसको तस्वीरें भेजी कि ये चीज़ें ट्राई कर। तो उन चीज़ों में उसने कहा मैं ये खा रहा हूँ, ये तो तस्वीरें वो भेज रहा था। फिर एक दिन उसको मैंने कफीर का भेजा, उसको मैंने कहा था दिन गट बैक्टीरिया जो है, वैसे उसमें 4 स्ट्रेन्स हैं और उसमें 12 से 13 स्ट्रेन्स होते हैं, तो कफीर मैं पीता हूँ तू भी पी। तो उसने कहा हाँ ठीक है मैं पीता हूँ। और उसके बाद उसने कहा मैं ये कर रहा हूँ, एक दिन मुझे लिस्ट आई मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो उसको मैंने कहा है सच लिख या जो भी बातों में, उसको भी मैंने कहा, तो कहते मैं हाँ ये कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं तू कफीर नहीं पी रहा। तो कहते ये कैसे बता सकता है कोई कि एक आदमी इतने में से कि तू कफीर नहीं पी रहा। मैंने कहा क्योंकि मैं तेरी नेचर जानता हूँ, मुझे पता है तू अपने पे ज़रा सी भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ तेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है, चाहे वो कोई बंदा भी कहे तेरे लिए अच्छी है, तू कभी नहीं करेगा। तेरी सेंस ऑफ स्मेल तक तू उसको सूंघना भी नहीं चाहेगा, इसीलिए तेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें और परेशानी है। अब सच बता तूने कफीर पिया? कहते नहीं। कहते उसकी बू ऐसी थी मैं नहीं पी सका, मैंने हल्का सा घूंट लिया मुझे उल्टियाँ आ गईं तो मैंने नहीं पी सका, और उसके बाद मैं वैसे ही कह रहा हूँ ठीक है। तो लेकिन वो कह रहा है कि कैसे ये बात, बंदा कैसे बात बता सकता। इसलिए कि जब आप किसी को, किसी की, मैं पर्सनल नहीं हूँ इस बात को लेके, लेकिन मैं नेचर जानता हूँ, मुझे एग्जैक्ट, जब लोग कहते हैं ना फलां बंदे ने ऐसे कह दिया, तो उसको मैं कहता हूँ आपने उनको मेरी ये बात बोली, बहन में फैमिली में भी कहते हैं, मैंने कहा आपने ये कहा तो आ, तो कहते हैं नहीं, तो मैं कहा जब आपने ये नहीं कहा तो वो कह सकता है एक बात। फिर मैंने कहा इसी तरह बोला था, उसने आगे से ऐसे ही बोला था या इस तरह कहा था, तो आगे से कहते हैं नहीं उस तरह नहीं इस तरह खात। तो वो कहते हैं आपको इस नेचर की नेचर जैसे नहीं बदल, जैसे रब की नेचर जब आप समझ जाएंगे, उस दिन मैंने पिछले शो में क्या कहा था, जिंदगी बदली हमारी रब की नेचर को समझने से। उसकी नेचर है एक उसकी कुदरत को भी नेचर कहते हैं और एक उसके मोड ऑफ ऑपरेशन को नेचर कहते हैं। दूसरा नेचर है दुनिया का जिसमें हम रहते हैं, ये एक नेचर के ऊपर खड़ी है, और तीसरा नेचर है बंदे का। अब इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्या जिसको मैं अपनी नेचर समझता हूँ वो मेरी इंस्टिंक्ट्स हैं, क्या वो मेरी लर्न्ड हेल्पलेसनेस है, क्या मेरी वो हैबिट्स हैं जो मैंने दुनिया से उठाई हैं, या माँ के पेट से शुरू हो जाती हैं हैबिट्स जो पुराने जेनेटिक्स से आपके अंदर आती हैं, या वो दुनिया में आप देखते हैं, ये वो हैं, या मेरी असल जो है, मेरा असल नेचर, मेरा रूह जो है वो कैसा है, उसको क्या बुराई करके खुशी होती है या अच्छाई करके खुशी होती है, फिर आप एक्सपीरियंसेस करते हैं इन तमाम चीज़ों की। इट्स वेरी रेयर कि जब आप कोई कंक्लूजन निकालें, इट्स वेरी रेयर कि जब आप खुदा के कानून को सामने रखें और फिर आप चीज़ बनाएं तो वो चीज़ गिर जाए, या आप कानून ने कुदरत को सामने रख के रिश्ते बनाएं और वो टूट जाएं। इट्स वेरी वेरी रेयर, और उसमें अगर आपने तमाम एलिमेंट्स डाले हुए हैं, उसमें सरप्राइज़ का एलिमेंट भी आपने डाला है, उसमें फ्री विल का एलिमेंट भी आपने लोगों की डाला हुआ है, और आपकी लोएस्ट तरीन एक्सपेक्टेशंस हैं, लोएस्ट भी नहीं लोएस्ट तरीन एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप मजबूत होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कोई भी नहीं होगा, आप इधर उधर देखेंगे नहीं, आपको पता है आप हैं, आपने अपना काम सही किया। जिसको पता है उसको पता है, वो 10-20 साल के बाद भी वापस आ जाते हैं लोग, और कई लोग एक ज़माने में आपको पता है ऐसी शहर में शो किए जाते थे बोल के लब आज़ाद हैं तेरे बंद कराने के लिए, फिर बाद में वही लोग इस शो को सुनते भी थे, इसके बारे में अच्छी बात भी करते थे, फिर वो यहाँ शो भी करते थे ठीक है। तो मैंने सब्र सब्र इस शो में ऐसे ऐसे लोग भी आए एक वक्त में जो इस शो के सारी दुनिया को बताते थे हम ये शो सुनते हैं फलां शो सुनते हैं, फिर वो लोग भी आए जिन्होंने कहा कि इसमें ये हुआ वो हुआ, आज़ाद साहब ऐसे नहीं है वैसे हैं फलां हैं, फिर वो लोग मैंने इंतज़ार किया 5, 7, 8, 10 साल, वो एक दिन ऑन एयर आए उन्होंने कहा मेरी से गलती होगी ठीक है, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा उनको, मैंने कोई बात, उन्होंने कहा मुझे ऐसे कौन कर लिया गया वैसे कर लिया गया मुझ पर ये कर दिया गया जो भी था कोई बात नहीं, पीछे हट के देखें एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें मैटर ही नहीं कर रही। हमें खाम खा लगता है कि मेरा सर्वाइवल का मोड आ गया, ये रब मुझे मुख्तलिफ चीज़ें मेरे इर्द गिर्द करके दिखाता है कि कौन कितनी जल्दी घबरा जाता है, कौन अपने आप को एजुकेट नहीं करना चाहता, कौन इंसान जो है वो आपका है और कौन आपका नहीं है। और देखें दुख तब करें ना आप किसी इंसान का, मेरा ना होने का मैं दुख तब करूं जब मैं ये कन्फर्म बता सकता हूं कि वो इंसान अपना ही नहीं है, वो अपने लिए अजाब है, वो अपने लिए परेशानी है, वो अपने लिए मुसलसल दुख तकलीफ लाएगा, तो ऐसे आदमी के जाने का मुझे दुख करना बनता है? सच बताएं
1: नहीं।
0: तो इतना आसान है दुख, जब ये हम दुख का शो करेंगे आपने ये वाला पॉइंट मुझे याद कराना है, कराएंगी याद?
1: इंशाल्लाह
0: मैं भूल जाता हूँ, आपको पता है मैं भुलक्कड़ हूँ थोड़ा सा
1: नहीं इंशाल्लाह याद जरूर पूछेंगे।
0: एक शो मैंने कुछ दिन पहले, पिछले साल से भी पिछले साल की बात है, मैंने कहा था दुख लोगों को बड़ा मुझे ये दुख है वो दुख है, अच्छा जो ये नहीं भी कहते ना उनके दुख सुनने वाले होते हैं, बड़े दुखी हैं वो, उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि जब आपने दुनिया के स्टैंडर्ड्स को मैच करना है ना फिर बच्चू जी ये दुख कभी ख़त्म नहीं होंगे, मैं गुजार चुका हूँ 32 साल का अजाब ठीक है, दुनिया के स्टैंडर्ड्स आपके माँ बाप के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हवा में खड़े हैं सब झूठ पे, उन्हें कुछ पता नहीं है बेचारों को, उनसे पहलों को भी कुछ पता नहीं है, 400 साल किसी को कुछ पता ही नहीं था, लोग नए ज़माने में आ रहे थे, नई नई चीज़ें हो रही थी, नई नई इन्वेंशनस हो रहे थे, बस कंपेटेबल होने के साथ साथ जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने वो किया, उन्होंने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं किया, बेसिक नीड्स से वॉन्ट्स पे चले गए, बेसिक्स भी नहीं लोगों के पास थे, वो जब मिले जिस स्पेशली हम जिस जगह पर हम थे, तो ये दुख एक्चुअल में दुख क्या होता है और इंसान को क्या दुख होना चाहिए, उसका किसी को कोई दुख नहीं है, वक्त ज़ाया हो रहा है कोई दुख नहीं, खामखा लोग लड़ाई डाल के बैठ गए हैं, लड़ाई डालते हैं, लड़ाई घरों में लड़ाइयाँ कर रहे हैं जाहिलों की तरह, इमोशन ज़ाया हो गए, एक ही ज़िंदगी मिलनी थी सिर्फ एक, इतने मेरे मुझसे जितने इज़्ज़त प्यार मोहब्बत लोग करते हैं ना, मैं उनकी ज़िंदगियों में मतलब उनके घरों में उनके फैमिली में उनके दिमागों के अंदर जन्नतें बना सकता हूँ अकेला मैं सिर्फ, लेकिन वो मुझे नहीं बनाने देंगे, यही से मैंने रब को पहचाना कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। अब मुझे समझ आती है अली कहते थे कि ना मैंने अपने इरादों के टूटने से रब को पहचाना, कुछ नहीं है किसी के पास, सब अकेले हैं, इसीलिए तो इतने डरपोक हैं, इसीलिए तो हर बंदे का सर्वाइवल मोड आ जाता है, इसीलिए तो सबको खुश रखने के चक्कर में है, फिर कहते हैं दुनिया है क्या करें, अरे भाई मैं भी उसी दुनिया में रहता हूँ, सुन आप मुझे रहें, चलना आप मेरे तरह चाह रहे हैं, खुश आप मेरी तरह रहना चाहते हैं, मतलब इज्जतें आप मेरी कर रहे हैं, लेकिन रहे आप वैसे रहें जैसे आप कहते हैं जी, क्या करें, अबे कुछ भी नहीं होगा, इसी तरह करते करते छन के काम छननी है, छन के सिर्फ ना ऊपर पत्थर रह जाएंगे सारे, गंद मंद छाण पूरा रह जाएगा, असल आटा नीचे होगा जिससे आपने ज़िंदगी की रोटी बनानी है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ, मैं कहाँ से चला था, कुछ नहीं था मेरे पास, अमेरिका आया था मेरे पास 5700 रुपीज़ थे, एक रुपया मैंने घर से वापस नहीं लिया कभी, जो कमाया था अपने ज़माने का आधा वहाँ लिया आधा यहाँ और आधा यहाँ, तो वहाँ से मैं यहाँ तक आ गया, किसी आदमी ने पैसे की कोई सपोर्ट मैंने अगर कभी किसी से लियो यहाँ जब तक कोई बिजनेस या कोई काम ना हो और उसमें वो शामिल होते, फ़ायदा होता तो वो भी शामिल होते, नुकसान होते तो वो भी होते, तो एक्चुअल में खाम खा के डर, इसी डर ने हमको बांधा हुआ और इनकैपेसिटेटिंग फियर्स हैं ये, हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाए, हम अपना पोटेंशियल ही नहीं पहचान पाते, हमें लगता है हमारी औलाद हमारी है, वेट एंड सी, बहुत जल्दी पता लग जाएगा आपको, माँ बाप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, बंदे को समझ नहीं आती, ऐसी ऐसी औलादे मैं देख रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो माँ बाप के साथ एहसान करने की, नेकी करने की कोशिश कर रही हैं, उनको मतलब नाकू चने चंबा रहे हैं और बेचारे वो पिट रहे होते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने, और वो भी सुन के साथ इतने ख्वार हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम खुदा के लिए डर रहे हैं। किस बात से डर रहे हैं आप, खुदा ने तो कहीं नहीं कहा ऐसा करो, तो कहा ही नहीं कि कोई बंदा नाजायज़ बात करे तो मान लो, नाजायज़ के साथ अगर आप चलते हैं तो आप कमज़ोर आदमी हैं, वीक हैं, आप खड़े नहीं हो सकते। आप पिछले, मैं जब से मुझे समझ आई है इन तमाम बातों की, पिछले 10 साल मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, मेरे खून के रिश्तों से लेके किसी बंदे के रिश्ते तक भी उठा लें और मुझे बताएं कि मैंने उनको कब नहीं बताया कि सच ये था, कब नहीं बताया उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, कब नहीं बताया मेरे में क्या वीकनेस है और मेरा क्या प्रॉब्लम है। जितने लोग ने नहीं बताया आज तक, कितने लोगों ने मुझे नहीं बताया कि उनके ये ये ये ये प्रॉब्लम्स हैं, वो आज भी अपने आप से झूठ बोलते हैं, वो मेरे से सुनकर चुप हो जाते हैं, आगे से नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं कह के फिर 2 साल 5 साल 10 साल बाद मुझे कहते हैं हाँ ये ऐसे ही था, ये ऐसे ही था, मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आज भी सब के सब मेरे इर्द गिर्द डरपोक हैं, झूठे हैं, झूठे नहीं कि जानबूझ कर नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, अपने आप से वो झूठ बोलते हैं, वो समझते हैं कि अगर ये सच बोल देंगे तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आज़ाद हो जाएंगे, सुकून में आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, खुल के खेल पाएंगे और उसके बाद देखें आपको पता लग जाएगा कौन आपका है कौन नहीं है। और ये बात कि हम सह नहीं पाएंगे, आप बहुत कुछ जहालत का अजाब रोज सहते हैं आप, रियलिटी ठीक है, बदबू में रह रह के आप, गटर में रह रह के हम लोग, हमें बदबू आना बंद हो गई है, जिस दिन खुशबू आप सूंघेंगे आपके दिमाग को चढ़ जाएगी और फिर आप निर्वाणा में होंगे जो सारी जिंदगी लोग कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी खुद सोचे, मुझे तो यार मैं तो फिल्म कर लूँगा, राइटिंग कर लूँगा, मैंने स्टेज प्ले कर लूँगा, मुझे तो लोग कहते हैं ये हैं आप, वो हैं, फलां फलां हैं, ये सारी बातें मैं तो बड़े आराम से कर सकता हूँ, नज़में लिख दूँगा, टीवी पे काम कर लूँगा, फिल्म में कर लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा। ये वाली असल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो असल ये वो बात है जो करने की है। ये फ़र्ज़ करें सुजय, ये बताएं, ये मैं आपको सारी बातें ना करूँ ना बताऊँ, मेरे स्टेटस पर कोई फ़र्क पड़ता है?
1: नहीं।
0: मेरे पैसों पे कोई फर्क पड़ता है?
1: नहीं।
0: मेरे जो काम, जो जिस किस्म के लोग हैं, अभी मैं एक दो बड़े काम करने जा रहा हूँ, आप देखिएगा जितने लोग मुझे नहीं जानते वो भी जानने लग जाएंगे, उससे मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो अभी भी तो 2-4-10 लोग मेरे लिए बहुत हैं, इससे ऊपर वैसे भी मेरे लिए क्राउड है, तो वो मुझे जान लेंगे तो क्या हो जाएगा? और फिर ये बातें भी शायद वो सुन लें कभी, ये मैं इसलिए ये काम करता हूँ कि चलो 2-4 लोग जान जाएंगे तो कम अज़ कम मेरे असल, जो मैं असल में हूँ उसकी तरफ आ जाएंगे, फिल्में लिख के, बातें करके, चीज़ें करके, रियलिटी कुछ ना कुछ बात करके, तो मैं उनको यहाँ ले आऊँगा कि भाई असल बात यह है करने और समझने की, बाकी सारा कार्रवाई है सारी की सारी। एक दिन मैं हूँगा ही नहीं, जब मर ही जाना है, ये आवाज़ ही नहीं रहेगी, ये बंदा ही नहीं रहेगा। अब मैं लोगों की पुरानी फुटेज देखता हूँ, जो लोग चले गए इस दुनिया से, उनकी आवाज़ रह गई है सिर्फ, या उनका जो वीडियोज़ रह गए हैं, तो आपकी और हमारी इस पूरी ग्रैंड स्कीम के अंदर इतना ही काम है कि जो वक्त और जो टाइम, जो चीज़ें हमारे पास हैं उसको शेयर करना, उसी से ही कुछ बनेगा। और अपनी मर्ज़ी से, मैं आपकी मर्ज़ी पे नहीं चल सकता और आप भी मेरी मर्ज़ी पे ना चलें, आपकी मर्ज़ी है, जो दिल चाहता है आप करें, लेकिन बेसिक चीज़ों को तो जानें, खुद को जानें, अपने आप को पहचानें, फिर देखें क्या होता है। मैं किसी भी, जो अपने आप को पहचानते भी हैं लोग, एक मज़े की बात आपको बताऊं, मैं अपने जितने लोगों को जानता हूं जो अपने आप को, वो हाइपर सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको पता, और सबको पता है कि वो डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट पीपल। उन्होंने इतने सालों की मार खाने के बाद, रिश्ते पैसे ज़ाया करने के बाद, इमोशन ज़ाया करने के बाद, अपने आप को जानने के बाद और ये शो सुनने के बाद, तो मेरी दोस्ती में, ताल्लुक में, रिश्तों में, अब अपने आप को अच्छा खासा जान लिया, ठीक हो गया, इससे पहले भी और उसके बाद भी, आज भी आपको पता है, और ये डिफरेंट हैं, वो ये जानते हैं। आपको पता है वो पहली चीज़ जो, जब भी मैं उनको देखता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ, या मेरे साथ वो शेयर करते हैं दुनिया में से कहीं से भी, मुझे जब डिफरेंट लोग शेयर करते हैं, आपको पता है ये तमाम डिफरेंट लोग जो तकलीफ़ में हैं काफ़ी और आगे भी तकलीफ़ में रहेंगे, लेकिन आपको पता है क्या रीज़न है, ये अब भी एक चीज़ क्या करना चाहते हैं,
1: क्या,
0: ये लोगों से एक्सेप्ट होना चाहते हैं और ये वापस कॉमनर बनना चाहते हैं। कितनी तकलीफ़ दे बातें, अपने आप को जान लेने के बाद ये हर वो काम करना चाहते हैं जो इनके लिए है ही नहीं, ये वो रिश्ते बनाना चाहते हैं जो ये कभी नहीं चला पाएंगे, ये वो टैलेंट हासिल करना चाहते हैं जो इनका है ही नहीं, ये वहाँ झंडे गाड़ना चाहते हैं जो इनका जगह ही नहीं है। ये है वो दुख जिसकी वजह से सारे लोग जानने के बाद भी नहीं जानते और उन चीज़ों की ख्वाहिशें रखते हैं जो उनके रास्ते पर ही नहीं है। और ये घूम फिर कर इतने पढ़े लिखे लोग, इतने इंटेलिजेंट साइकोलॉजिस्ट, इतने बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग, इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, रिलीजियस स्पीकर, ये घूम फिर के जब मेरे पास हम जब आपस में मिलते हैं तो सिर्फ यही क्यों दुखी परेशान और तकलीफ में होते हैं? मुझे तो कभी नहीं देखा इन्होंने दुखी तकलीफ में या परेशानी में, क्योंकि वो एक बात जो ये नहीं करना चाहते, ये नहीं मानना चाहते कि ये डिफरेंट है, ये दोबारा नॉर्मल हो गए, लोगों से एक्सेप्टेंस चाहते हैं, सोसाइटी से एक्सेप्टेंस चाहते हैं, और ये वो चाहते हैं जो ये चाहते हैं, और वो नहीं हो सकता, पैकेज डील में वो चीज़ है ही नहीं। तो ज़िंदगी वैसे बनाएं जैसे आप जी सकते हैं, जैसे आप खुश रह सकते हैं, और वो चीज़ें जो आपको नाखुश रखेंगी, थोड़ा सा वक्त रह गया हम तो, क्योंकि अभी यू नो 40 के बाद सारा काम बोनस पे, मैं तो गिनना, आपको पता है मैंने गिनना ही छोड़ दिए साल, क्या
1: फायदा।
0: आप लोग कहते हैं लेकिन आपको मेरे सुबह सुबह घोड़े गिट्टों की चिरी चिरी की आवाजें नहीं आती ना। मैंने रहना है अपने साथ, मुझे पता है मैं कितना जवान, ऊपर से ये ऊपर के देख दुख में ना जाए, अंदर से काम बहुत पुराना हो गया है। अब तो लोग ये भी नहीं कह सकते कि आप, किसी ने उस दिन मुझे कहा जी आप बड़े हैंडसम आदमी, मैंने कहा आपने हमारी जवानी नहीं देखी, उसके सामने तो ये खंडर है। बड़ा हंसे, वो कहते नहीं आपकी तरह तो फलाम बनना चाह रहा है मेरा बेटा या फलाम बंदा बनना चाहता है। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा उसको नहीं पता फिर हमारी जवानी, तो हम ऐसे हंसते रहते हैं, क्या मतलब क्या जवानी होगी हमारी, क्या मतलब जवानी में, तो याद है आपको गांव में क्या कहते थे, जवानी में तो गधा भी खूबसूरत होता है। याद है पठानों में भी कहते हैं जवानी, जवानी खुद खूबसूरती का नाम है, मतलब जवानी में तो कोई भी खूबसूरत होता है। या तो इसीलिए सारी कार्रवाई है बीच में से, हम वैसे हंस खेल लिया करें, लोग जब प्यार मोहब्बत से कुछ कहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट ले लेना चाहिए हंस खेल के। आपने अपने अगले पिछले सारे अपने जो है ना वो गिले शिकवे दूर कर दिए लोगों से, ठीक है। चले आखिर में ना, आखिर में क्योंकि ये स्पेशल शो है तो कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जंग से रिलेटेड और इन बातों को, डिपेंड करता है अगर किसी की कॉल आ गई तो उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता जिन चीज़ों के बारे में, और मीडिया के बारे में क्वेश्चन आया पड़ा मेरे पास कि जंग से ही रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुन रहे थे आप हमारी को होस्ट डॉक्टर साहिबा को, बांका सजीला, एक बांका कितना सही फिट आया वैसे, एक बांका और दूसरा से जीला, दोनों साथ आपकी खिदमत में हमने एक घंटा की ये जो डिस्कशन पेश किया जी, उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ आपको समझ आई हो, कि नहीं आई हो कोई बात नहीं, हम इधर ही रहते हैं और चीज़ें सारी रिकॉर्ड, जो सवाल पूछे गए हैं जी जंग से रिलेटेड और मामलात और हालात से रिलेटेड, तो इतना मैं क्योंकि ये लंबी बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा किसी एक शो में इंशाल्लाह, जब ये इस पागलपन को थोड़ा सा ज़रा सेटल डाउन होने दे, मेरा ख्याल है क्योंकि आज वक्त कम है, आज हमारे मेहरबान आए हुए थे तो हमने उनसे बात कर ली ज़्यादा, और क्योंकि आप लोगों ने आकर वो बात छेड़ी भी नहीं तो इसीलिए हमने वो बात जाने दी, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, जो पागलपन है, उसमें सिर्फ इतना ही आपको बताया जा सकता है कि 90% जितनी भी खबरें हैं वो सब झूठ हैं, ठीक। ये पहली निशानी होती है चीज़ों की, जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी बातें हो रही हैं, और ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं दोनों तरफ से, और ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो कोई भी सैनिटी, कोई भी सेन एनवायरनमेंट के अंदर सैनिटी कहीं प्रवेल नहीं कर रही है। आप मीडिया अगर सुनेंगे देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, और इतना झूठ है, इतना झूठ बोला जा रहा है, और वो सारे अगले दिन जब पता भी लग जाता है, आजकल के ज़माने में ना छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसका फ़ौरन फुटेज बन जाती है, चाहे वो सरहद की इस तरफ हो या उस तरफ हो, जिस चीज़ की कोई फुटेज नहीं है वो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और जो सबूत हैं जिन तमाम चीज़ों का, वो तमाम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मिल रहा है आपको, तो इसलिए आप ये, और सोशल मीडिया बहुत आगे निकल गया, अब गवर्नमेंट किसी भी किस्म की हो उसके झूठ पकड़ना बहुत ही आसान है, और लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद बहुत चीज़ों को फ्यूल किया जा रहा है। मैं किसी दिन आपको ना बैठ के थोड़ा प्रैक्टिकली कुछ बातें बताऊँगा, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि एक्चुअली बबल, ये सारे का सारा एक बबल है, और इसके बीच में जो चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया, और उसके अलावा इतने लोगों की जानें ले ली गई हैं, और उसकी कोई न वजह बनती है, न तुक बनती है, ना कोई कोई सबूत है किसी बात का, लेकिन जिसने अपना अपना एजेंडा होता है, और वो एजेंडा कैसे पुश किया जाता है और कहां तक हमें यूज़ किया जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते, इसके बारे में फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। फरमाइश आई थी बड़े दिनों से कि जी अपनी नज़म वगैरह कोई नहीं सुना रहे, तो हम आपको अपनी नज़म एक सुना देते हैं। ये फिल्म मैंने की थी आइटम के नाम से, वो फिल्म क्योंकि जब आप पाकिस्तान में कोई भी चीज़ करते हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ वो इसलिए करते हैं कि वो ना कर सकें, ठीक है, कोई भी काम, जिस वजह से मैंने ये फिल्म की थी, हमारे माशरे में औरत के साथ जो मुकाम है औरत का, जो कार्रवाइयों में बताया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ऑन ग्राउंड सड़क के ऊपर काम करने वाली जो लेडीज़ हैं उनके साथ क्या होता है, और हमने भी देखा है और लोग आज भी करते हैं, और वो करते करते वर्स्ट को पहुंच गया है, तो औरत को एक आइटम के तौर पे देखा जाता है। और आपकी इतला के लिए आज है, उसमें आइटम नंबर भी है, और कमाल बात यह जब हम उसकी डबिंग करने गए तो आइटम नंबर पर फिल्म खुल रही है। तो जो मैडम थी उन्होंने मेरी तरफ़ देखा और उन्होंने कहा आज़ाद सोच रहे हो, खुद उन्होंने मुझे नहीं डायरेक्ट नहीं कहा, जो बंदा डबिंग करा रहा था उसको उन्होंने कहा आज़ाद सोचेंगे कि कैसी फिल्म बनाई है मैंने। तो मैं कहा नहीं, जितना कर सकते ठीक है, फिल्म के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, और ये जो आपने डाला है ये हकीकत है, ये मैं खुद देख चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, चलता है ये सब। तो इस किस्म के उसमें ये नज़म भी थी, और फिर बाद में क्योंकि मेरा हाल एडिटिंग वगैरह में, और क्योंकि टाइम जब एडजस्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर ये नज़म उसमें से अब शायद ना हो, क्योंकि जब डबिंग हुई थी तो उसमें मैंने ये डबिंग नहीं की उसकी, तो इससे ये पता चलता है। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम एक्टिंग नहीं है, वो डबिंग है। और डबिंग भी वो एक एक लाइन लाइन को मीटर में रखना, दो दो लफ्ज़ बोलना, सर्दी में जब आपके होंठ दांत बज रहे हों और होंठ जो हैं वो सख्त हुए हों, वहाँ पर डायलॉग बोलना, और उसके बाद कंफर्टिंग से डेस्क में बैठ के एनवायरनमेंट में वो सर्दी की एक्टिंग करना, ये वाज सो डिफ़िकल्ट और अजीब अजाब। तो पुराने ज़माने के जितने लोग थे, अब तो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ गए हैं, उसमें आप बहुत सारी लाइन्स नहीं करनी पड़ती और आराम से चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन दिस वॉज द वर्स्ट थिंग जो कि दो दिन मुसलसल हम करते रहे, और खैर चीज़ें तो हो ही गई, और उम्मीद करते हैं कि वो लिप सिंक वगैरह भी ठीक किया होगा। बट पहले 9 दिन, पता है 8 से 9 घंटे खड़ा रहा मैं और करता रहा चीज़ों को, तो फिर अगले दिन मैंने कहा हेलो भाई ये ऐसे नहीं होगा जैसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं, मास्टर्स ऑफ द गेम, इसको ऐसे करें और मैं इसको ऐसे करके फिर करके दिखाता हूँ आपको। तो फिर अगले दिन 3-4 घंटे में काम हो गया, जो पहले 8-9 दिन तकरीबन 20% भी नहीं हुआ था। तो आप जब भी कोई चीज़ देखते हैं, समझते हैं, आपको अपनी वीकनेस का भी पता होता है, अपनी एक आध स्ट्रेंथ का भी पता होता है, और फिर आप पूरा 8-9 दिन, फिर आपको बड़ा बुरा फीलिंग भी होती है कि यार ये मतलब ये क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप कहते हैं एक मिनट है, सोचते हैं आप पीछे हट के कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। और अगले दिन फिर मिरेकल हो गया कि हो गया वो। अब वो कैसा हुआ है, जब मैं स्क्रीन पे वैसे देख रहा था तो मुझे सब कुछ ही बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो फुटेज भी और थी, अब इसमें म्यूज़िक नहीं था, ग्रेडिंग नहीं थी, और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो फिर मैंने पहले मेरे दिल में आया कि वह की कर बैठा मैं, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे इंजॉय करते हुए आपको साथ साथ दिल के डर बताते रहते हैं ना अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें, तो बहुत लोग बताते हैं सच्ची सच्ची नहीं बताते, तो सच्ची सच्ची से पता चलता है, सच्ची सच्ची से फिर आगे चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं, ठीक है, जो कि हमें नहीं किसी ने बताया, और सैकड़ों साल गुजर गए। चले शुरू करते हैं यहीं से ही। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अगला हफ्ता हम कुछ चीज़ों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं जी हम, तो फोकस की सीरीज़ हमको चाहिए, हम भी सुने आप भी सुने। उम्मीद करते हैं आप ज़िंदगी में किस चीज़ पे फोकस करना है ये भी हम उसमें से सीखेंगे, फोकस करना कैसे है, फोकस होता क्या है, पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है हमें नहीं पता चलता, तो हम उसको पिकअप करने की कोशिश करेंगे कि क्या है जी जो जिसकी पर्दादारी और फोकस ही नहीं हो पा रहा हमसे, तो हम भी फिगर आउट करेंगे उसको। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, जब वापस आएंगे तो फिर अगर ये पागलपन थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा, अभी सिर्फ आपको इतना बता दूंगा, अभी थोड़ा सा पागलपन सेटल होने से पहले ज़रा उछलेगा, और उसके बाद बाकी चीज़ें कुछ बेहतर होंगी, तो फिर देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे डिटेल में उनके बारे में पूरी एनालिसिस करके आपको देंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि जहनों में थोड़ा सा सोचने समझने की आसानी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। इल्म हासिल किए बगैर आसानी हो नहीं सकती, रियलिटी जाने बगैर हकीकत पसंद होना, अपनी एक्सपीरियंस उसको सामने रख के अपने दिमाग और दिल को इस्तेमाल किए बगैर अगर आप आसानी चाहते हैं तो फिर मरने मुरने की तैयारी करें, उसके अलावा और कोई आसानी नहीं है। वो भी काफ़ी मुश्किल काम है, वो भी कोई नहीं करता, सिर्फ कहते रहते हैं लोग, ठीक है। खुश रहें, इंजॉय करें, और ये कुछ सुनाते हैं, कुछ बोल हैं, काश हम भी हों ऐसे, काश आप भी हो सकें ऐसे।
14: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Thursday, 13th of August, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. Iran's Araghchi warns US of bigger miscalculations over Strait of Hormuz. Major Russian grain export terminal hit in Ukraine, Black Sea port attack. ICE, ICE, plans to equip agents with gloves that can deliver electric shocks. Students opening their A-level, T-level and BTEC results as record number get university places. England braces for 38 degrees Celsius highs as amber extreme heat warning comes into force. UK economy grows between April and June, but experts warn of challenges in coming months. Once-in-a-generation solar eclipse wows millions in UK and Europe. Now the details. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi says the US miscalculated the Iran war due to intelligence failures and made an even bigger miscalculation over the Strait of Hormuz. Hussein Taib, the commander of the paramilitary Basij organization, says the Strait of Hormuz is under Iran's control and management. This comes as Donald Trump continues to insist that the US has total control over the strait, despite shipping traffic through the key waterway dropping to a one-week low amid the escalating war on Iran. A massive Ukrainian drone and missile strike on Russia's port has damaged two major grain export terminals and hit the last big Russian naval base on the Black Sea, reports say. Three people, including an 8-year-old child, were killed and another 24 injured in the overnight attack, local officials said. Ukraine's President Volodymyr Zelensky said Kiev had launched rockets, jet and naval drones in a unique operation to strike the Russian base, although he did not mention grain terminals being hit. Ukraine's military said four Russian warships, including two frigates, were hit. Russia has not commented on the issue. A massive Ukrainian drone and missile strike on Russia's port has damaged two major grain export terminals and hit the last big Russian naval base on the Black Sea, reports say. Three people, including an 8-year-old child, were killed and another 24 injured in the overnight attack, local officials said. Ukraine's President Volodymyr Zelensky said Kiev had launched rockets, jet and naval drones in a unique operation to strike the Russian base, although he did not mention grain terminals being hit. Ukraine's military said four Russian warships, including two frigates, were hit. Russia has not commented on the issue. U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE. Officers may soon be equipped with gloves that can deliver electric shocks as they carry out their law enforcement duties. The gloves can deliver up to 380 volts of electricity, roughly the three times the charge of a standard U.S. power outlet. Civil rights groups, including the American Civil Liberties Union, have expressed alarm over its use. ICE is under scrutiny for its tactics using enforcement activity, which have resulted in several fatal shootings by officers. U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE. Officers may soon be equipped with gloves that can deliver electric shocks as they carry out their law enforcement duties. The gloves can deliver up to 380 volts of electricity, roughly the three times the charge of a standard U.S. power outlet. Civil rights groups, including the American Civil Liberties Union, have expressed alarm over its use. ICE is under scrutiny for its tactics using enforcement activity, which have resulted in several fatal shootings by officers. Students across England, Wales and Northern Ireland are reacting to the A-level, T-level and BTEC results. A record number of 18-year-olds have secured a place at their first choice of university. The gap between the highest and lowest performing regions in England has also grown again. In Scotland, students received grades for their National 5, Higher and Advanced Hires, exams last week. The pass rate rose across the board. Temperatures in parts of England could hit 38 degrees Celsius today as the UK's fifth widespread heatwave this year peaks. It is expected to be hottest in the east, southeast, and the Midlands in England, with an amber extreme heat warning in place until 12 o'clock tonight. Scotland and Northern Ireland will have more cloud with a chance of showers in some areas. Meanwhile, A&Es in England are experiencing their busiest summer ever, with health workers describing dripping with sweat from head to toe during the record-breaking heat. The last time temperatures rose above 36 degrees Celsius in August was 2020, when 36.4 degrees Celsius was recorded at Heathrow and Kew Gardens. The UK and Europe have enjoyed their most dramatic solar eclipse for nearly 30 years, with millions thought to have witnessed the once-in-a-generation event. Those watching the astronomical phenomena from the UK were treated to a partial eclipse, which peaked shortly after 7 o'clock in the evening, when most saw more than 90% of the sun covered by the moon. But parts of Greenland, Iceland and Spain experienced the complete darkness and spectacle of a total eclipse. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
3: इंस्पायर एफएम की उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकर्रम अब्बास। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान से बातचीत जारी है, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। अमरीकी सेनेटर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पेश कर दी गई है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ग्रूमिंग गैंग के अरकान की मुमकिन जल्द रिहाई पर फौरी नज़रसानी का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने अहम इजलास में शहदा और दिगर गाजियों को सिविल अवार्ड्स देने का फैसला किया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सोफा फैक्ट्री में आग लगने से 11 बांग्लादेशी मजदूर जाँ बहक हो गए। और जमात इस्लामी के अमीर ने कहा है कि पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ मजीद तेजी से एहतजाज करेंगे। और अब इन खबरों की तफसील। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत जारी है, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, आबनाए हुरमज खुल जाएगी। दूसरी जनब ईरान इस वक्त अमान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, जहां दोनों फरीक आबनाए हुरमज से तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए एक ऐसे मुआहदे के करीब बताए जा रहे हैं जो दोनों के लिए काबिले कबूल हो। अमरीकी सेनेटर जॉन हैकन लूपर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा है कि हमने ईरान के खिलाफ अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गैरकानूनी जंग के खात्मे के लिए एक रेजोल्यूशन पेश कर दी है। सेनेटर जॉन हैकन लूपर ने मजीद लिखा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी जानें ज़ाया हो रही हैं, गैस और फर्टिलाइजर्स की कीमतें आसमान को छू रही हैं और हमारी फ़ौज का ज़खीरा ख़त्म हो रहा है, लिहाजा जंग ख़त्म की जाए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम ने ग्रूमिंग गैंग्स के अरकान की मुमकिन जल्द रिहाई पर फौरी नज़रसानी का हुक्म दे दिया है। तर्जुमान प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक केसेस का फौरी तौर पर जायज़ा लिया जा रहा है। पहले मरहले में इन मुजरमों की शिनाख्त की जाएगी जिन्हें रिहा किया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जेलों में गुंजाइश पैदा करने के लिए 5,000 कैदियों की रिहाई का मनसूबा तैयार किया है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहदा और शुजात व बहादरी का मुजाहरा करने वाले 78 गाजियों को सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी दी गई। इस मौके पर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जानों का नजराना पेश करने वाले और शुजात का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई करना रियासत की जिम्मेदारी है। वतन अजीज शहदा और गाजियों की लाजवाल क़ुरबानियों का एहसान मंद है। सऊदी अरब के कैपिटल सिटी रियाज में एक सोफ़ा फैक्ट्री में आग लगने से 11 बांग्लादेशी मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। बांग्लादेश के मिनिस्टर ओवरसीज़ ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि वो लाशों को जल्द अज जल्द बांग्लादेश पहुँचाने और लवाहिकीन की माली इमदाद करने के लिए फौरी इकदामात करे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक में मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी और 16 अगस्त को चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धरने दिए जाएंगे। इस दौरान जमात इस्लामी मुल्क में आदलाना निज़ाम के क़याम के लिए आवाम को मुनज़्ज़म करेगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत जारी है, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, आबनाए हुरमज खुल जाएगी। दूसरी जनब ईरान इस वक्त अमान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, जहां दोनों फरीक आबनाए हुरमज से तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए एक ऐसे मुआहदे के करीब बताए जा रहे हैं जो दोनों के लिए काबिले कबूल हो। अमरीकी सेनेटर जॉन हैकन लूपर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा है कि हमने ईरान के खिलाफ अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गैरकानूनी जंग के खात्मे के लिए एक रेजोल्यूशन पेश कर दी है। सेनेटर जॉन हैकन लूपर ने मजीद लिखा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी जानें ज़ाया हो रही हैं, गैस और फर्टिलाइजर्स की कीमतें आसमान को छू रही हैं। सामीन, ये थीं इस वक्त की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally, and internationally. This is Inspire FM.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

0: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 2:30.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

0: You are listening to the Drive Time Show on Inspire FM, serving Luton and the surrounding areas.
1: The UK's finest, Inspire FM presents the Drive Time Show with Khalil Mohammed.
2: Join Khalil Mohammed on the Drive Time Show, where everyone is a winner.
3: अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से रابطہ कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन।
4: Inspired. Inspire FM.

0: as the moon cracks.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Thursday, 13th of August, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. Iran's Araghchi warns US of bigger miscalculations over Strait of Hormuz. Major Russian grain export terminal hit in Ukraine, Black Sea port attack. ICE, ICE, plans to equip agents with gloves that can deliver electric shocks. Students opening the A-level, T-level and BTEC results as record number get university places. England braces for 38 degrees Celsius highs as amber extreme heat warning comes into force. UK economy grows between April and June, but experts warn of challenges in coming months. Once-in-a-generation solar eclipse wows millions in UK and Europe. Now the details. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi says the US miscalculated the Iran war due to intelligence failures and made an even bigger miscalculation over the Strait of Hormuz. Hussein Taib, the commander of the paramilitary Basij organization, says the Strait of Hormuz is under Iran's control and management. This comes as Donald Trump continues to insist that the U.S. has total control over the strait, despite shipping traffic through the key waterway dropping to a one-week low amid the escalating war on Iran. A massive Ukrainian drone and missile strike on Russia's port has damaged two major grain export terminals and hit the last big Russian naval base on the Black Sea, reports say. Three people, including an 8-year-old child, were killed and another 24 injured in the overnight attack, local officials said. Ukraine's President Volodymyr Zelensky said Kiev had launched rockets, jet and naval drones in a unique operation to strike the Russian base, although he did not mention grain terminals being hit. Ukraine's military said four Russian warships, including two frigates, were hit. Russia has not commented on the issue. A massive Ukrainian drone and missile strike on Russia's port has damaged two major grain export terminals and hit the last big Russian naval base on the Black Sea, reports say. Three people, including an 8-year-old child, were killed and another 24 injured in the overnight attack, local officials said. Ukraine's President Volodymyr Zelensky said Kiev had launched rockets, jet and naval drones in a unique operation to strike the Russian base, although he did not mention grain terminals being hit. Ukraine's military said four Russian warships, including two frigates, were hit. Russia has not commented on the issue. U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE. Officers may soon be equipped with gloves that can deliver electric shocks as they carry out their law enforcement duties. The gloves can deliver up to 380 volts of electricity, roughly the three times the charge of a standard U.S. power outlet. Civil rights groups, including the American Civil Liberties Union, have expressed alarm over its use. ICE is under scrutiny for its tactics using enforcement activity, which have resulted in several fatal shootings by officers. U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE. Officers may soon be equipped with gloves that can deliver electric shocks as they carry out their law enforcement duties. The gloves can deliver up to 380 volts of electricity, roughly the three times the charge of a standard U.S. power outlet. Civil rights groups, including the American Civil Liberties Union, have expressed alarm over its use. ICE is under scrutiny for its tactics using enforcement activity, which have resulted in several fatal shootings by officers. Students across England, Wales and Northern Ireland are reacting to the A-level, T-level and BTEC results. A record number of 18-year-olds have secured a place at their first choice of university. The gap between the highest and lowest performing regions in England has also grown again. In Scotland, students received grades for their National 5, Higher and Advanced Highers, exams last week. The pass rate rose across the board. Temperatures in parts of England could hit 38 degrees Celsius today as the UK's fifth widespread heatwave this year peaks. It is expected to be hottest in the east, southeast and the Midlands in England, with an amber extreme heat warning in place until 12 o'clock tonight. Scotland and Northern Ireland will have more cloud with a chance of showers in some areas. Meanwhile, A&Es in England are experiencing their busiest summer ever, with health workers describing dripping with sweat from head to toe during the record-breaking heat. The last time temperatures rose above 36 degrees Celsius in August was 2020, when 36.4 degrees Celsius was recorded at Heathrow and Kew Gardens. The UK and Europe have enjoyed their most dramatic solar eclipse for nearly 30 years, with millions thought to have witnessed the once-in-a-generation event. Those watching the astronomical phenomena from the UK were treated to a partial eclipse, which peaked shortly after 7 o'clock in the evening, when most saw more than 90% of the sun covered by the moon. But parts of Greenland, Iceland and Spain experienced the complete darkness and spectacle of a total eclipse. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
0: इंस्पायर एफएम की उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकर्रम अब्बास। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान से बातचीत जारी है, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। अमरीकी सेनेटर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पेश कर दी गई है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ग्रूमिंग गैंग के अरकान की मुमकिन जल्द रिहाई पर फौरी नज़रसानी का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने अहम इजलास में शहदा और दिगर गाजियों को सिविल अवार्ड्स देने का फैसला किया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सोफा फैक्ट्री में आग लगने से 11 बांग्लादेशी मजदूर जाँ बहक हो गए। और जमात इस्लामी के अमीर ने कहा है कि पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ मजीद तेजी से एहतजाज करेंगे। और अब इन खबरों की तफसील। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत जारी है, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, आबनाए हुरमज खुल जाएगी। दूसरी जनब ईरान इस वक्त अमान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, जहां दोनों फरीक आबनाए हुरमज से तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए एक ऐसे मुआहदे के करीब बताए जा रहे हैं जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। अमरीकी सेनेटर जॉन हैकन लूपर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा है कि हमने ईरान के खिलाफ अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गैरकानूनी जंग के खात्मे के लिए एक रेजोल्यूशन पेश कर दी है। सेनेटर जॉन हैकन लूपर ने मजीद लिखा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी जानें ज़ाया हो रही हैं, गैस और फर्टिलाइजर्स की कीमतें आसमान को छू रही हैं और हमारी फ़ौज का ज़खीरा ख़त्म हो रहा है, लिहाजा जंग ख़त्म की जाए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम ने ग्रूमिंग गैंग्स के अरकान की मुमकिन जल्द रिहाई पर फौरी नज़रसानी का हुक्म दे दिया है। तर्जुमान प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक केसेस का फौरी तौर पर जायज़ा लिया जा रहा है। पहले मरहले में इन मुजरमों की शिनाख्त की जाएगी जिन्हें रिहा किया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जेलों में गुंजाइश पैदा करने के लिए 5,000 कैदियों की रिहाई का मनसूबा तैयार किया है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहदा और शुजात व बहादरी का मुजाहरा करने वाले 78 गाजियों को सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी दी गई। इस मौके पर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जानों का नजराना पेश करने वाले और शुजात का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई करना रियासत की जिम्मेदारी है। वतन अजीज शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसान मंद है। सऊदी अरब के कैपिटल सिटी रियाज में एक सोफ़ा फैक्ट्री में आग लगने से 11 बांग्लादेशी मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। बांग्लादेश के मिनिस्टर ओवरसीज ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि वो लाशों को जल्द अज जल्द बांग्लादेश पहुँचाने और लवाहिक़ीन की माली इमदाद करने के लिए फौरी इकदाम करे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक में मजीद तेज़ी लाई जाएगी और 16 अगस्त को चारों सूबाई दारकूमतों में धरने दिए जाएंगे। इस दौरान जमात इस्लामी मुल्क में आदलाना निज़ाम के क़्याम के लिए आवाम को मुनज़म करेगी। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत जारी है, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, आबनाए हुरमज खुल जाएगी। दूसरी जनब ईरान इस वक्त अमान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, जहां दोनों फरीक आबनाए हुरमज से तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए एक ऐसे मुआहदे के करीब बताए जा रहे हैं जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। अमरीकी सेनेटर जॉन हैकन लूपर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा है कि हमने ईरान के खिलाफ अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गैरकानूनी जंग के खात्मे के लिए एक रेजोल्यूशन पेश कर दी है। सेनेटर जॉन हैकन लूपर ने मजीद लिखा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी जानें ज़ाया हो रही हैं, गैस और फर्टिलाइजर्स की कीमतें आसमान को छू रही हैं। सामीन, ये थी इस वक्त की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally, and internationally. This is Inspire FM. Coming up next, health and fitness with Farhad Matin. This is Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Memorize the morning and evening adhkar, reciting these protective prayers daily to build a mental shield against anxiety and keep your heart at peace. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
4: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
5: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
7: Assalamu alaikum. Calling all young brothers aged 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.

अब अगली बात हम करेंगे एहतिनामे हिदायत और इल्म का फर्क। देखें, अगर मैं आपको कहूं कि कोई आपसे पूछे ये आज का प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, और कहे वो उधर वो एक सेंटर है वहां पर हो रहा है रवात में, और वो आपको यहां पहुंचने की हिदायत देते हैं, उसको भी हिदायत ही कहते हैं ना। आपने वो हिदायत लिख ली, लेकिन अगर मैं कहूं कि उसने आपको यहां पहुंचने का इल्म दिया, मालूमात दी, वो भी बात ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हिदायत और मालूमात एक ही बात है। आप मुझे हिदायत दें मैं कौन सा कोर्स लूँ, प्रोफेसर से पूछा जाके, मैं कौन सी किताब पढ़ूँ, और जब आपको वो हिदायत देगा वो मालूमात ही दे रहे हैं ना। तो बहुत सारी मिसालों में हिदायत और इल्म में कोई फ़र्क नहीं होता, एक ही बात होती है। किसी को हिदायत देना और किसी को इल्म देना एक ही बात होती है। लेकिन कुरान ने हिदायत और इल्म में एक तरफ तो एक ही बात, एक पहलू से एक ही बात है, और एक और पहलू से दो कंप्लीटली पूरी तरह से मुख्तलिफ बातें हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जैसे बनू इसराइल के उलमा, उनके बारे में कुरान ने कहा है कि ये इल्म वाले लोग हैं, इल्म बहुत है उनके पास। क्या नहीं है? हिदायत नहीं है। अगर इल्म और हिदायत एक ही चीज है, तो अगर उनके पास इल्म बहुत है तो इसका मतलब है उनके पास क्या बहुत है? हिदायत बहुत है। इबलीस के पास बहुत इल्म है, बहुत इल्म है। उसके पास सारे अंबिया का इल्म, बल्कि उन अंबिया का भी इल्म जिनको हम नहीं जानते, उनकी कौमों को भी बर्बाद करने पहुंच गया था। उसको हम किस्सा आदम पढ़ते हैं, वो किस्सा आदम में खुद था, उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज है, बराह रास्त इल्म है उसको। हम मलाइका के बारे में सीखते हैं, वो अब मलाइका से उसकी मुलाकात हो चुकी है, उनके साथ में वो रह चुका है, यानी उसके इल्म में कोई कमी नहीं है। किस चीज में कमी है? हिदायत पर। तो एक पहलू से तो हिदायत और इल्म एक ही चीज है, एक और पहलू से हिदायत और इल्म दो अलग अलग मुख्तलिफ कंप्लीटली अलग चीजें हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे इल्म मांगू, मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें, मालूमात मांगो, इल्म मांगो, एक दफा आपने वो इल्म हासिल कर लिया तो अब वो आपका हो गया। आप इल्म को ओन कर सकते हो। आपने सीख लिया एक दफा, दो और दो जमा चार इल्म है ना। अब आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप उससे मजीद और इल्म सीखें और मजीद सीख लेंगे, उसके बाद मजीद और फिर मजीद और मजीद और, इसी को तालीम कहा जाता है। पहली जमात में जो सीखा उसकी बुनियाद पर दूसरी में मजीद सीखा, दूसरी में पहली वाली बात नहीं हो रही, दूसरी वाली बात हो रही है, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, पीएचडी तक पहुंच गए। जब पीएचडी में पहुंचे तो बैचलर्स वाली बात नहीं हो रही, आगे बात हो रही है। इल्म के मराहिल से जब इंसान गुजरता है ना, तो पीछे नहीं जाता, हमेशा आगे जाता है। जिसके पास ज़्यादा इल्म है वो, आप उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई, अब वो उसके बारे में सीखना चाह रहा है। वो एक दफ़ा वो दरिया वो पार कर ले, उसके सामने एक और दरिया आ जाता है, अब वो उसको पार कर रहा है। यही बात है ना। तो इल्म में क्या होता है? तरक्की। इल्म में हमेशा होती है तरक्की। लेकिन हिदायत में ना कभी ऊंचा, कभी ऊंच, कभी नीच, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी आगे, कभी पीछे। इसीलिए वो हिदायत ऐसी चीज है, पहली तो आप उसको ओन नहीं कर सकते। आप इल्म को किसी हद तक ओन कर सकते हो, मेरा है ये इल्म, मुझे इल्म है इसका। आप जबान सीख सकते हो, आपने जबान सीख लिया, आप उसको ओन करते हो, अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी एक ओनरशिप है उसके ऊपर। लेकिन कुरान जिस चीज को हिदायत कह रहा है ना, वो इल्म से कहीं ज्यादा है, कोई और ही चीज है जिसको आप कभी ओन नहीं कर सकते। और क्योंकि आप उसको ओन नहीं कर सकते और आपको उसकी जरूरत है, तो आपको वो बार बार मांगनी पड़ती है, और एक दफा आपको दे दी जाए तो वो आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहती। इल्म की तरह, इल्म आपको एक दफा दे दिया जाए ना, आपके पास ही रहता है। इल्म एक दफा मिल जाए तो रहता है, अगर आपको, खासकर आपको उसमें दिलचस्पी हो और आपने ठीक तरीके से सीख लिया हो, तो वो आपके पास ही रहेगा। इल्म सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। वो इल्म, किसी ने एक दफा ऑयल चेंज करना सीख लिया या घर का दरवाजा फिक्स करना सीख लिया, अब उसको पता है, उसको बार बार सीखने की जरूरत नहीं है, उसके पास वो इल्म है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस सूरत में जो हमसे मुतालबा करने को का सिखाया है ना, एहदिना
हिदायत दीजिए, हम कितनी दफा मांगते हैं। कम से कम दिन में अगर 5 वक्त का नमाजी है और सिर्फ फर्ज नमाज अदा कर रहा है, सिर्फ फर्ज 17 मरतबा हिदायत का मुतालबा कर रहा है। और ये मुतालबा हम सिर्फ अल्लाह ताला से ही नहीं कर रहे, बल्कि हम ये की सुन्नत पूरी कर रहे हैं, और ये सुन्नत है हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, और वो हमसे कहीं ज़्यादा नमाज पढ़ते थे, यानी हमसे कहीं ज़्यादा मरतबा अल्लाह के रसूल अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, हिदायत। इंसानियत का हादी, इंसानियत को हिदायत देने वाला इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से बेशुमार मरतबा हर रोज क्या मांग रहा है, हिदायत। इल्म तो है उनके पास, और मैं तो ये भी कहूंगा कि हिदायत भी उन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी वो हिदायत क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको मिसाल के जरिए से समझाता हूं। कुरान ने कुरान की अपने कुरान को भी हिदायत ही कहा है, हुदा कहा है, और कुरान ने कुरान की मिसाल समझाने के लिए पानी की मिसाल दी है। तो कुरान का नाजिल होना बारिश के नाजिल होने से उसकी तशबीह की गई है कुरान के अंदर। पानी के बारे में सोचते हैं, प्यास लगती है, इंसान क्या करता है, पानी पीता है। एक दफ़ा पानी पी चुका तो ये नहीं कहता चलो पानी का तकाजा तो पूरा हो गया, अब किसी और चीज़ की तरफ जिंदगी, नहीं नहीं नहीं 2-3 घंटे बाद क्या होना है, फिर जिस्म खाली होना शुरू हो गया पानी से, दोबारा पानी, फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा पानी, फिर दोबारा पानी, फिर दोबारा पानी। आप अपने जिस्म को बरकरार नहीं रख सकते, ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती बगैर पानी के। इसी तरह मेरी रूहानी ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती बार बार क्या चीज़ देने से, हिदायत। एहतिना। इल्म रहेगा, और पता है इल्म किसी के पास बहुत ज़्यादा भी हो जाए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास हिदायत है। मुझे जितनी हिदायत की ज़रूरत है उतनी आपको है। आप मुझसे आप में से कई मुझसे कहीं ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, आप में से कई कम हैं, लेकिन हिदायत का मुतालबा हम सबका एक ही जैसा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसमें आपकी डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है। कुरान का हिफ्ज़ करना इल्म है या हिदायत है, इल्म है। इल्म के ज़्यादा होने से हिदायत की गारंटी नहीं मिलती। हिदायत का रास्ता आसान होता है, उसमें कोई शक नहीं, अब आपके पास वो मालूमात हैं जिनके ज़रिए से आप हिदायत ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास असल में हिदायत है। आपके पास मालूमात हैं, मालूमात हैं, हिदायत और चीज़ है। हिदायत मांगनी पड़ती है, हिदायत कभी आप ओन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कभी नहीं कह सकता अल्लाह का शुक्र है पिछले साल अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, अब मेरी दुआ है कि बाकी फैमिली को भी हिदायत दे दे, क्योंकि मुझे तो देती अब मेरी जेब में है, इन बेचारों को भी मिल जाए तो इनका भी भला हो जाए। मेरे जहन में कभी आएगा नहीं कि मैं अब हिदायत के स्कूल से ग्रेजुएट हो सका, हो चुका, मेरी हिदायत की डिग्री है, बाकी बेचारे मिस्कीन अब इनको देने की ज़रूरत है। ये जहनीत आएगी नहीं मेरे दिमाग में कभी, क्योंकि हर नमाज में मैं इस बात को अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले हिदायत की। अच्छा, नमाजें हमारी कम अज़ कम 5 हैं, कुछ कुछ घंटों के वक्फे से क्या सिखाया जा रहा है इस, और नमाज की असल क्या है। यहाँ तक के हदीस कुदसी में फातिहा को सलात कहा गया है, फातिहा को ही नमाज कहा गया है, और इस जो नमाज की बुनियाद है वो फातिहा है। और इस फातिहा में जब मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहा हूँ, पता है इसका उसके मकासद में से एक मकसद क्या है, या अल्लाह ये जोहर की नमाज होने लगी है, जोहर और असर के दरमियान मेरे सामने बहुत सारे फैसले करने को होंगे, छोटे और बड़े, इधर देखूं या इधर ना देखूं, ये कहूं या ये ना कहूं, ये जवाब मैसेज में भेजूं या ना भेजूं, इस तरह से इस डील को हाँ करूं या ना करूं, इसके बारे में किसी से और बात करूं या ना करूं, फैसले करने होते हैं ना ये हर लम्हे में, और उस हर फैसले के लिए या अल्लाह मुझे क्या दे, हिदायत दे। और फिर ये जो जज्बा होता है हिदायत तलब करने का, वो कुछ घंटों में वो सूख जाता है, और फिर नमाज का टाइम आया, फिर क्या पूछा, हिदायत दे दे मेरे रब, अब मगरिब तक जो फैसले करने हैं उनमें हिदायत होगी,
उम्मीद है कि हिदायत होगी अगर दिल से मांगी है तो। फिर एक और इसके साथ एक और बात याद आ गई, मांगने मांगने में फर्क होता है नहीं। अगर कोई आपसे कहे पानी ला दें और आप भूल गए, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने मांगा तो था लेकिन कोई इतनी डेस्परेट सिचुएशन नहीं थी। और कोई आ रहा है बहुत प्यास लगी है पानी दे दें प्लीज प्लीज पानी, लेकिन फिर आप मौसम पे बहस नहीं करोगे, आप क्या अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैं भी लेके आता हूं। जिस तरीके से इंसान मांगता है ना, उससे पता चल जाता है उसको किसकी कितनी जरूरत है। अगर हम अल्लाह ताला के सामने नमाज में खड़े हैं और कह रहे हैं इन साल मुस्तकीम, वरना वो रहमत हो ही नहीं सकती, ये भी है इसके अंदर जिन अल्फाज में अल्लाह ने कहा है एक दिन सिरात मुस्तकीम। अच्छा, आप अरबी में मुख्तलिफ असालीब मुमकिन है, आप ये भी कह सकते हैं एहदीना इला सिरात, ये भी कह सकते हैं एहदीना अला सिरात, ये भी कह सकते हैं एहदीना लिस सिरात, और ये भी कह सकते हैं एहदीना सिरात जैसे फातिहा में है। यानी मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल हो सकते हैं, हर एक हर्फ का अपना मकसद है। मैं आपको इसका थोड़ा सा मुख्तसर तरीके से इनका फ़र्क समझा देता हूँ। एहदीना इला सिरात है, अगर मैं कहूँ मुझे नहीं पता कि जो हस्पताल है वो किधर है, तो आप कहें यहाँ से सीधा जाएं, फिर राइट टर्न लें, फिर लेफ्ट टर्न लें, फिर 5 किलोमीटर जाएं, अस्पताल आ जाएगा। यह है इला, उसकी तरफ हिदायत देना। एक एक डेस्टिनेशन है, एक आपकी मंजिल है, उस मंजिल की तरफ किसी को हिदायत दी जाए ना, उसके लिए इला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो कुरान ने जब जन्नत की तरफ पहुँचने का रास्ता समझा दिया ना, वो इला है, यहदीहिम इला तरीक़ मुस्तकीम। ये इला भी इस्तेमाल हुआ है कुरान में, ठीक है ना। तो इला से मुराद होगी मालूमात। जब इला आएगा ना, तो वो कौन सी मालूमात हैं जो मुझे अपनी मंजिल तक ले जाएंगी। दूसरा लफ्ज़ है अला सिरात, एहदीना अला सिरात। अला सिरात मुराद है मैं रस्ते में हूँ और रस्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, और रस्ते में चलते हुए जो रुकावटें हैं उनको मैं कैसे, उनसे मैं कैसे गुजरूँ फंसे बगैर या गुमराह हुए बगैर। यानी रस्ते पर चलते हुए क्या क्या हिदायत मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे कहें हाँ वो हस्पताल तो 5 मील दूर है, लेकिन रस्ते में एक रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो ज़रा आप लेफ्ट पे रह जाना, या फलाना एक आएगा वो ये इशारा आएगा उस पर ज़रा साइड से गुजर जाना। ये क्या है एहदीना अला अस्सिरात, एहदीना अला अस्सिरात, ये दूसरा है। तीसरा क्या है एहदीना लिस्सिरात, एहदीना लिस्सिरात। लाम इस्तेमाल होता है, लाम हर्फुल गाया इसको अरबी में कहते हैं, आखिर तक पहुंचाने के लिए। यानी मैं किसी से कहूँ कि सर आपने हस्पताल की डायरेक्शंस तो बहुत अच्छी दे दी, मेहरबानी करके आप मेरे साथ अगर गाड़ी में बैठ जाए ना और मुझे वहाँ तक पहुँचा दें, आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दें, या आप मेरे साथ फ़ोन पर रहें जब तक मैं पहुँच नहीं जाता। तो क्या किया, जो इंसान आपके साथ सारा रास्ता रहे जब तक आप मंजिल तक पहुँच ना जाए, उसने क्या किया एहदीना लिस्सिरात, हमें आखिरी मंजिल तक पहुँचने तक हमारे साथ हमें गाइड करते रहें, हमारे साथ ही रहें। हम कुरान में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। जन्नत के बारे में कहा जाता है जन्नत में पहुंचने के बाद अहले ईमान कहेंगे अल्लाह में उन सब में से बनाए, वो हम कहेंगे अल्लाह ताला के लिए हम्द है जिसने हमें यहाँ तक हिदायत दी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। लाम इस्तेमाल हुआ है क्यों, क्योंकि इशारा इस बात की तरफ किया जा रहा है अल्लाह ताला हमारे साथ पूरा रास्ता था यहाँ तक पहुँचाए, यहाँ पहुँचाने तक, यह है ली। अच्छा, फातिहा में ना एहदीना इला सिरातिल मुस्तकीम है, ना एहदीना अला सिरातिल मुस्तकीम है, ना एहदीना लिस सिरातिल मुस्तकीम है, बल्कि कोई हर्फ है ही नहीं, सीधा सीधा है क्या एहदीना अस सिरातिल मुस्तकीम बगैर हर्फ के। तो क्या मायने हुए, इसको कहा जाता है अलउमूम अलिशमाल, यानी तमाम हर्फ शामिल हैं, इनमें से अगर एक हर्फ भी इस्तेमाल किया होता ना तो बाकियों का हक अदा ना होता। सुबहानअल्लाह, क्या मालूमात चाहिए जन्नत तक पहुंचने के लिए, एहदीना सिरात शामिल है।
रस्ते में क्या क्या रुकावटें आएंगी, उनको कैसे समझा जाए, इहदिना अस्सिरात शामिल है। अल्लाह ताला हमारे साथ सारा रास्ता हमारे साथ रहेगा, हुआ माकुम अइनमा कुंतु, उसकी मैयत उसकी सोबत हमारे साथ रहेगी, इहदिना लिस्सिरात, और वो सब शामिल करके एक ताबीर में इहदिना सिरात। सुभान अल्लाह, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। अब ये अस्सिरात के बारे में कुछ, इहदिना और अस्सिरात के ताल्लुक

जिस रास्ते पर लोग चलते रहे ना बार बार, और उस पर कदम के निशान बन जाए और फिर उस पर घास उगनी बंद हो जाए और पता चल जाए कि इस तरफ से लोग चलते रहे कई दफ़ा, उसको तरीक कहा जाता है। यानी लोगों के ज़्यादा चलने की वजह से वो तरीक बन गई, ठीक है, उसे तरीक कहते हैं। और ये आमतौर पर छोटे रास्ते होते हैं, ये लंबे रास्ते नहीं होते, ये छोटे रास्ते होते हैं। और जो छोटे रास्ते होते हैं वो आमतौर पर आपको एक बड़ी रोड की तरफ ले जाते हैं। उससे जो ज़रा एक बड़ी साइज की रोड होती है उसको सबील कहा जाता है। यानी इस तरह समझ लें कि जो तरीक है वो आपको सबील तक ले जाएगी, तरीक सबील तक ले जाएगी। अच्छा, सबील क्या है? सबील जो है उसकी जमा होती है सुबुल, सबील और सुबुल। सूरतुल अलकबूत में अल्लाह कहते हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। तो तरीक छोटा और बहुत ज़्यादा चला हुआ, और सबील उससे ज़रा बड़ा रास्ता। अच्छा, और सबील की जमा क्या होती है, मैंने क्या कहा था? सुबुल। अच्छा, तरीक की जमा है तराइक और तुरुक, दोनों। तराइक कुरान में इस्तेमाल हुआ है, कुन्ना तराइका क़िदादा, सूरतुल जिन में। अच्छा खैर, सिरात अजीब लफ्ज है, इसकी जमा नहीं है। तरीक की जमा है तुरुक और तराइक, सबील की जमा है क्या? सुबुल। सिरात की जमा नहीं है, क्यों? ये सिरात ऐसे रास्ते को कहते हैं जिसके लिए कोई अल्टरनेटिव रोड नहीं है। जैसे दो आइलैंड हैं उनके दरमियान एक ही ब्रिज है, वो ब्रिज क्या होगा फिर? सिरात, क्योंकि उस उधर पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है, आपके पास एक ही रास्ता है। तो तरीक से इंसान सबील पे पहुंचे, और तमाम सबीलें जाके कहाँ मिलेंगी? सिरात पे। और हो सकता है कि आपका शुरू होने वाला रास्ता कोई और तरीक या कोई और सबील हो, या कोई और सबील हो, कोई और सबील हो, लेकिन बाद में जाकर सब एक जगह कहाँ मिलेंगे? सिरात के ऊपर। ना सिरात का लफ्ज़, क्योंकि उसकी जगह नहीं है, उसके और भी मायने हैं। सिरात का लफ्ज़ असल में आता है सुरात से, पेश के साथ, सुरात। और सुरात अरबी में कहते हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की तलवारें होती थी। कुछ तलवारें जो हैं वो ज़रा बुड़ी हुई होती हैं, और कुछ तलवारें बिल्कुल सीधी होती हैं। जो मोटी हो, चौड़ी हो और सीधी हो, उसे सुरात कहा जाता है। उसी से निकला लफ्ज़, जो सड़क कुशादा हो और बिल्कुल सीधी हो उसे सिरात कहते हैं, और उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। और तमाम छोटी छोटी सड़कें तरीक और सबील उसी में आके मिलती हैं। इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, एक दफ़ा एक रास्ते पर इस रास्ते पर इंसान आ जाए तो उसको कोई मुश्किल नहीं होगी कि अब किस तरफ मुड़ें किस तरफ ना मुड़ें, क्योंकि रास्ता कैसा है? बिल्कुल सीधा है। और इसके अलावा कोई और रास्ता भी है कि बस एक ही? नहीं, एक ही रास्ता है। इसमें एक और बड़ी अजीब बात यह है कि यह रास्ता लंबा होता है, यानी मंजिल तो वाज़ेह है कहाँ है, लेकिन सफ़र लंबा है। अब क्योंकि कुशादा है, कुशादा होने में क्या फ़ायदा हुआ, सोचे ज़रा। हाँ, बहुत सारे लोग एक वक्त में सफ़र कर सकते हैं, एक लेन नहीं है, मल्टीपल लेन्स हैं। कुछ लोग इस पे ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, कुछ लोग आहिस्ता चल रहे हैं, कुछ लोग अभी नए नए किसी सबील से जाके इसमें शामिल हुए, कुछ लोग आपसे 1,000 मील पीछे हैं, कुछ लोग आपसे 1,000 मील आगे हैं। आपको कुछ लोग अपने से आगे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग अपने से पीछे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग आपसे कई सालों पहले इस पूरे रास्ते से गुजर चुके, आगे आखिर तक पहुँच चुके, आप पीछे रह गए हो। लेकिन मकसद बस एक ही है, ये नहीं कहा या अल्लाह हमें इस रोड पर सबसे तेज़ गाड़ी दे दे, इस रोड पर हमें सबसे तेज़ चला दे। एक बात मांगी है, हिदायत दे दे कि जिस भी रास्ते से हम शुरू हुए हो इस सड़क तक हमें पहुंचा दे। बस एक दफ़ा इस सड़क पर आ गए, जिस रफ्तार से चलना होगा या जिसके साथ चलना होगा उसकी फिक्र हमें कम है। कम से कम क्या है कि हम इस सड़क पर हैं। अब इस सड़क पर आने के बाद कोई हाफ़िज़े कुरान है जिसको अरबी भी आती है, तजवीद भी आती है, आलिम भी है, इस सड़क पर आने के बाद कोई 55 साल ईसाई था, कल मुसलमान हो गया, अब वो सड़क पे, वो पीछे उसको अलिफ़ बा भी नहीं पता, उसको नमाज भी ठीक से भी पढ़ी नहीं।

0: इंग्लिश में नमाज पढ़ रहा है, ठीक है ना। इस सड़क पे कोई 90 साल का है, इस सड़क पे कोई 12 साल का है। हर एक की स्पीड मुख्तलिफ, हर एक का लेवल मुख्तलिफ, हर एक का इल्म मुख्तलिफ, हर एक की शुरुआत मुख्तलिफ। कोई किसी सड़क से शुरू हुआ था, कोई किसी सड़क से, किसी का कोई बैकग्राउंड, किसी का कोई बैकग्राउंड, किसी की कोई मुश्किल, किसी की कोई मुश्किल। कोई इस सड़क पे दो लोग इकट्ठे शुरू हुए और एक बहुत जल्दी आगे निकल गया और एक आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, कोई बात नहीं, किसी के साथ कंपेरिजन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस दुआ में हमने मंजिल की तलब नहीं की, सड़क की तलब की है। अजीब दुआ है, हिदायत मांगी जाती है मंजिल के लिए, हिदायत सड़क के लिए नहीं मांगी जाती है। आप मुझे बता दें सड़क पे कैसे पहुंचूं, आपका मकसद क्या है? बस सड़क नहीं, सड़क से कहां जाएंगे, बस आप सड़क पे पहुंचा दें, बाकी मुझे कोई फिक्र नहीं। ये कैसी बात कर रहे हो? कभी भी नहीं होता कि आपकी असल गायत, आपका असल मकसद सड़क हो। आपका असल मकसद होता है सड़क कहां लेके जा रही है। लेकिन इस सूरत में हमें किस चीज, हमने क्या मांगा है? अगर मांगना होता, अगर हम कहें असल मकसद मेरा जन्नत है या अल्लाह से मुलाकात है, या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा जो तुझ तक पहुंचा दे, या मुझे अपने तक पहुंचने का रास्ता बता दे, ये भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। हिदायत किस चीज की है? हिदायत मुझे किसी तरह इस सड़क तक पहुंचा दे, बस। अजीब बात है। इससे हमें क्या सीखना है? हमें सीखना यह है कि इस्लाम में, इस दुनिया में, इस जिंदगी में मुझे अंजाम से दिलचस्पी कम है, सफर से दिलचस्पी ज्यादा है। मैं अगर दो कदम चला इस सफर में और मेरी मौत हो गई, कामयाब हो, अगर मैं हजार कदम चला और मौत आ गई, कामयाब हो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं मैं कितना चला। बस इतना है कि मैं इस सड़क पर था और इस सड़क पर मैं चल रहा था। अब एक अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मुझे किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की दिलचस्पी नहीं रही। ये तो मुझसे आगे निकल गए, ये तो मुझसे पीछे हैं, इनको भी ना ना ना ना ना। हर एक का अपना पेस है, हर एक की अपनी स्पीड है। बहुत कुछ आदगी है इस रोड में भाई, आप किसी के पीछे नहीं फंसे हुए। कुछ लोग आपके साथ चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते हैं सपोर्ट आपको। आप एक दूसरे को जो रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनका आप सामना कर सकते हो। साइड पे और रोड्स हैं, उन पे बड़े प्यारे प्यारे साइंस लगे हुए, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न ले लो, इधर भी आ जाओ थोड़ी देर, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लो, और आपका दोस्त आपको खींचेगा, नहीं नहीं नहीं चलते रहो। नहीं यार बहुत थक गए, एग्जिट तो ले दो यार, थोड़ा सा इस वीकेंड एग्जिट ले लें, उसके बाद तक उन बादी ही कौमन साले हैं, उसके बाद अच्छे हो जाएंगे ना, चलते रहो साथ। जो साथ होगा ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सीधा चलाता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में, लेकिन इसमें सिर्फ बस एक चीज रह गई और वो ये है कि
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना YouTube चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
0: जिस तरह आप अगर ऐनक सनग्लासेस पहनते हो, उसका लाल रंग का शेड हो तो सारी चीज़ें लाल नज़र आती हैं, ब्लू हो तो सारी ब्लू नज़र आती हैं, कुरान हो तो सारी चीज़ें कुरान के लेंस से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आपका एक व्यू बदल जाता है। और यही एक बुनियादी मकसद है कुरान का, कि अगर वो नज़र आना शुरू हो जाए तो सीधा रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, और जो गलत रास्ते हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं दूर से ही। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Explore local nature trails and hiking paths, unplugging from the city grid to marvel at Allah's creation while getting an intense leg workout. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
4: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
5: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
7: Assalamu alaikum. Calling all young brothers aged 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.

0: इससे हमें हमें क्या सीखना है? हमें सीखना ये है कि इस्लाम में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में मुझे अंजाम से दिलचस्पी कम है, सफ़र से दिलचस्पी ज़्यादा है। मैं अगर दो कदम चला इस सफ़र में और मेरी मौत हो गई, कामयाब हो, अगर मैं हज़ार कदम चला और मौत आ गई, कामयाब हो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं मैं कितना चला, बस इतना है कि मैं इस सड़क पर था और इस सड़क पर मैं चल रहा था। अब एक अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मुझे किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की दिलचस्पी नहीं रही, ये तो मुझसे आगे निकल गए, ये तो मुझसे पीछे हैं, इनको भी ना ना ना ना, ना हर एक का अपना पेस है, हर एक की अपनी स्पीड है। बहुत कुशादगी है इस रोड में भाई, आप किसी के पीछे नहीं फंसे हुए। कुछ लोग आपके साथ चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते हैं सपोर्ट आपको। आप एक दूसरे को जो रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनका आप सामना कर सकते हो। साइड पे और रोड्स हैं, उन पे बड़े प्यारे प्यारे साइंस लगे हुए, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न ले लो, इधर भी आ जाओ थोड़ी देर, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लो, और आपका दोस्त आपको खींचेगा, नहीं नहीं नहीं चलते रहो चलते रहो चलते रहो, नहीं यार बहुत थके, एक एग्जिट तो ले लो यार, थोड़ा सा इस बस इस वीकेंड एग्जिट ले लें, उसके बाद तक उन बादी ही कौमन सालिहिन, उसके बाद अच्छे हो जाएंगे ना, चलते रहो साथ, जो साथ होगा ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सीधा चलाता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है इहदिना सिराता मुस्तकीम में, लेकिन इसमें सिर्फ बस एक चीज़ रह गई, और वो ये है कि अगर सिरात खुद ही से डिक्शनरी के अतबार से सीधी है तो फिर मुस्तकीम का क्या फ़ायदा? अगर इहदिना सिरात कहा होता तो सीधा रास्ता पहले ही था, और मुस्तकीम से उसके सीधे होने में इजाफा नहीं हुआ। मुस्तकीम असल में कहा जाता है अरबी में इस्तकामा से, कामा से निकला है, जो क़ियाम से मुतालिफ है। क़ियाम किस चीज़ को कहते हैं? खड़े होने को। मुस्तकीम है जो वजीनु बिलकिस्तासिल मुस्तकीम, जो स्केल होता है ना, मीज़ान जिससे सौदा वगैरह वे किया जाता है, उसको खड़ा किया जाता है ना, सीधा खड़ा करना। मुस्तकीम है जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, मुस्तकीम ऊपर की तरफ होता है। तो ये सड़क सीधी भी है, कुशादा भी है, और जितना आप इस पर चलोगे आपकी ऊंचाई बढ़ रही है। ये भी एक इसमें इस्तेआरा है, इसमें एक मिसाल दी जा रही है, आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो। यरफ़ अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला आप में से जिनका इल्म है और जो अहले ईमान है और जिनको इल्म दिया गया, उनके दरजात को ऊंचा करता रहेगा। आपके दर्जे जितना आप इस रस्ते पर चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ऊंचे हो रहे हो। आप इस मिसाल को समझो, जितना मैं ऊंचा जा रहा हूं, पीछे क्या रह गया? दुनिया और दुनिया वाले लोग जो इस रस्ते पे चलना नहीं चाहते ना, उनसे मेरी दूरी होती चली जा रही है, क्योंकि मैं इस रस्ते पे चल रहा हूं और वो लोग अभी जमीन पर हैं, और मैं एक तरह से मेरा उनसे फासला बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब आप इस रास्ते पे चलते हो ना, तो आपकी कंपनी में थोड़ा फर्क आना शुरू हो जाता है। आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जब भी आप मिलते हो, आपने बात करनी होती है फैशन के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, कुछ 7-8 टॉपिक्स हैं उसी के अंदर, या दोस्तों के बारे में, या फलाने के इंस्टाग्राम के बारे में, या फलाने के टिकटॉक के बारे में, या किसी की गीबत, या किसकी शादी, और किसकी मंगनी, और किसका कितनी अब रस्में कितनी है, 15-16 है रस्में, नहीं अब नंबर इंक्रीजिंग, मायू एंड पायू एंड शायू एंड टायू, आई डोंट नो, यही बातें होनी है बस। जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हो, वो बातें तो हैं, लेकिन उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है आपकी, आपको एक फासला महसूस होता है कि इस कंपनी में कुछ दिल नहीं लग रहा, कोई या इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि ये बातें मुझे इस रास्ते से खींच रही हैं, मुझे दोबारा नीचे लेके आ रही हैं। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्दी, लेकिन वो ज़मीन की तरफ रह गया, ज़मीन की तरफ रह गया। वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो हम उस इल्म की बुनियाद पर उसको ऊंचा कर देते। कुरान क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं अल्लाह ताला से? या अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत दे जिस पे हम चलें तो हम क्या होते चले जाएं? ऊंचे। अच्छा, ऊंचाई का एक और फ़ायदा है, जितना इंसान ऊंचा जाता है उसके व्यू में क्या फ़र्क पड़ता है? ओहो, उसको बहुत आगे की नज़र आती है, उसको बहुत पीछे की नज़र आती है, उसको वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं जो औरों को नज़र नहीं आ रही, उसको नजर आना शुरू हो जाता है, वो उसका जो मंजर है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऐसा हो जाता है कि जो बाकी ऊपर नहीं पहुंचे हुए ना, वो उसको समझ नहीं पा रहे। वो कहते हैं मुझे ये नजर आ रहा है, कहते क्या पागल वाली बात कर रहे हो, यहाँ तो दरख्त है। नहीं, इस दरख्त के पीछे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे एक दरिया है, उस दरिया के पीछे पहाड़ है। क्या यार, ये रेस्टोरेंट है बस, आपको वो बाकी आगे की चीज नजर ही नहीं आ रही, और फिर पीछे की चीज आपको नजर नहीं आ रही। जो इसका जिसका व्यू ऊंचा ना हो, उसको सिर्फ जो इमीडिएटली उसके सामने है, फौरी तौर पे उसके सामने है, उसको वो नजर आएगा। जो फौरी तौर पे कल उसके पीछे है, वो उसको नजर आएगा। जो कुरान के जरिए से ऊंचा होता चला जाता है ना, उसको बहुत आगे क़यामत का दिन भी नजर आना शुरू हो जाता है, और बहुत पीछे आदम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आनी शुरू हो जाती है। मंजर बदल जाता है ना आपका, और फिर आपको पूरा एहसास होता है मैं हूं कहाँ पे। मैं आपको हाइकिंग की मिसाल देता हूँ। हाइकिंग में अगर कोई किसी जंगल में पहाड़ में कहीं गुम जाए ना, तो क्या हिदायत दी जाती है बता, क्या इंस्ट्रक्शन होती है? आप हाई एलिवेशन पे जाओ, क्योंकि अगर आप हाई एलिवेशन पे जाओगे तो आपको व्यू मिलेगा, फिर आपको अंदाजा होगा आप कहाँ खड़े हो। जो जितना इस रास्ते पे चढ़ेगा, उतना उसको वाकई में अंदाजा होगा वो खड़ा कहाँ पर है, मैं हूं किस मोड़ पर अपनी जिंदगी में। एक दिन सिरात अल मुस्तकीम, ऐसे जैसे हम अल्लाह ताला से कह रहे हो कि या अल्लाह मुझे ये भी नहीं पता मैं अपनी जिंदगी में कहां खड़ा हूं, मुझे खुद नहीं मालूम, आप बता दें, आप इस रास्ते से बता दें, आप मेरे व्यू को, मेरी नजर को बदल दें, मेरी बसीरत को बदल दें। असल में यही, जहां तक मैं जितना मैं कुरान के बारे में सोचता हूं, मैं कुछ नतायज हैं जो दिल में खुप जाते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा नतीजा मेरे अपने लिए पर्सनली ज़ाती तौर पे वो ये है कि कुरान के बुनियादी मकासद में से है कि जिस लेंस से मैं दुनिया को देखता हूँ ना, वो बदल जाती है। अपने आप को देखता हूँ, अपने ताल्लुकात को देखता हूँ, दुनिया को देखता हूँ, दूसरों को देखता हूँ, उस पर असर पड़ जाता है। जिस तरह ना आप अगर ऐनक सनग्लासेस पहनते हो, उसका लाल रंग का शेड हो तो सारी चीज़ें लाल नज़र आती हैं, ब्लू हो तो सारी ब्लू नज़र आती हैं, कुरान हो तो सारी चीज़ें कुरान के लेंस से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आपका एक व्यू बदल जाता है। और यही एक बुनियादी मकसद है कुरान का, कि अगर वो नज़र आना शुरू हो जाए तो सीधा रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, और जो गलत रास्ते हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं दूर से ही। इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम। आई थिंक यू गाइज विल रियली एंजॉय दिस सेशन, ये सेशन स्पेशल। किसी को याद है इतनाब क्या होता है? मैंने कहा था इतनाब कोई चीज होती है, एक ही लफ्ज दो दफा कहना, जबकि दो दफा कहने की जरूरत बजाहिर ना थी, अगर आप ना कहते तो फिर भी बात वाजे हो जाती, राइट? तो उसका एक खास मकसद होता है। जिस तरह हमने पहले कहा था, कुरान में एक भी लफ्ज एक्स्ट्रा नहीं है, कोई ज्यादती नहीं है, कोई कमी नहीं है। सिरात का लफ्ज भी दो दफा आया, अस्सिरात अल मुस्तकीम, और फिर दोबारा क्या, सिरात अल लदीना अनअमता अलैहिम। ये भी कहा जा सकता था अस्सिरात अल मुस्तकीम अल्लज़ी, और इसी के साथ जोड़ के सिरात अल मुस्तकीम अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, और मुख्तलिफ उसके असालीब मुमकिन थे। लेकिन दोबारा जिक्र करने का मकसद ये है कि इस सड़क के बारे में अल्लाह ताला ने हमें इस राह के बारे में दो चीज़ें समझने की हिदायत दी है। एक कि हमें दूसरों के लिए इसमें जगह बनानी है, इसमें कुशादगी है। दूसरा, इस सड़क पर चलने के लिए अगर हमें कामयाब रहना है तो हमें अपने से पीछे देखना पड़ेगा। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने पहले से ही नेमत की। नेमत को भी समझ लें, उर्दू में हम नेमत तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेमा अरबी में नुमा से निकलता है। नुमा कहते हैं नरमी को, आसानी को, आराम को। जानवर जो आराम से चलते हैं ना, जैसे बिल्ली तेज चलती है, कुत्ता तेज चलता है, लेकिन गाय भैंस आराम आराम से चलते हैं, तो उन्हें अनआम कहा जाता है, क्योंकि वो आराम आराम से चलते हैं। नईम अरबी में कहते हैं कोई चीज़ जो हो वो बहुत नरम हो। इनआम से मुराद है अल्लाह ताला ने जिसके लिए आसानियाँ पैदा की, जिसके लिए चीज़ जो है वो सहूलत वाली बनाई। सिरात लदीना अनअमता अलैहिम में इस बात की तरफ इशारा है कि अगर सफ़र बहुत लंबा है और सीधा है तो इसका मतलब है और ऊपर की तरफ जा रहा है। और बाय द वे, जितना सफ़र ऊपर की तरफ जाता है, जितनी रोड में एलिवेशन होती है, उतना मुश्किल होता है और थकाने वाला होता है। तो जितना इंसान थकेगा उतना इम्कान है कि वो फिर आधे रास्ते में छोड़ देगा या पीछे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, या हमने पूछा अल्लाह से, या अल्लाह कुछ लोगों के लिए आपने ये मुश्किल रास्ता भी आसान बना दिया। इस मुश्किल रास्ते में भी आपने आसानियां पैदा कर दी, सहूलतें पैदा कर दी। वो कौन लोग हैं, उनके बारे में हमें बता दें। सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, इसकी एक आसान मिसाल भी समझ लें। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो और आप कोई डिग्री कर रहे हो और आपको नसीहत चाहिए कि मैं करियर में क्या करूं, आप किससे पूछोगे? क्या आप उससे पूछोगे जो फर्स्ट ईयर में है आपकी तरह, या आप उससे पूछोगे जो ग्रेजुएट हो चुका और अब इंडस्ट्री के अंदर है? किससे पूछोगे? ग्रेजुएट से पूछोगे ना, जो आपके साथ है वो आपकी तरह, वो भी गुमा हुआ है, आप भी कंफ्यूज। वो आपको एडवाइस तो बड़ी देगा, लेकिन उसकी एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई तजुर्बा नहीं है, वो इस रास्ते से गुजर नहीं चुका। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा उन लोगों का रास्ता जिनको आप, जिन पर आप इनाम करते हैं, नहीं, उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम कर चुके। माजी इसलिए कि हाल में जो लोग अल्लाह ताला आज उन पर इनाम कर भी रहा हो, उनके कल की कोई जमानत नहीं है। हो सकता है वो थोड़ी सी प्रोग्रेस कर लें, लेकिन हो सकता है बाद में वो रास्ते से गिर जाए। हर इंसान गिर सकता है, किसी को कोई गारंटी नहीं है। और ये भी हमारे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा है, हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये हिदायत याफ्ता है, इसको फॉलो करोगे तो जन्नत मिलेगी। हयात में से जो भी हयात है ना, उससे मैं आपसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में कह सकता हूँ, ना आप मेरे बारे में कह सकते हैं कि हिदायत तो इस शख्स के पास है। इस पर अल्लाह ने बड़ा इनाम किया, इसको फॉलो करोगे तो बस जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब एक रास्ते पे चल रहे हैं, हम में से कोई भी किसी वक्त भी गिर सकता है, बल्कि गिरे ना भी जानबूझ के या बगैर, यानी जानबूझ के गलती से भी गलती कर सकता है इंसान। उसके फहम में गलती हो सकती है, उसके अमल में गलती हो सकती है, उसकी समझ में गलती हो सकती है, मुमकिन है कि नहीं? तो अगर हमें कोई ऐसा रोल मॉडल चाहिए जो गारंटी हो कि इसको फॉलो करना है तुम गलती नहीं होगी, तो वो ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो पूरे रास्ते से गुजर के अंजाम तक पहुंच चुके, फिनिश लाइन तक पहुंच चुके। उसके अलावा किसी से मैं सपोर्ट तो ले सकता हूं, लेकिन उस पर मैं 100% डिपेंड नहीं कर सकता। और ये भी बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि इस बाकी मजाहिब में क्या हुआ बताए, हिंदुइज्म में पंडित है, कैथोलिसिज्म में पोप है, और ये जो शख्सियतें हस्तियां होती हैं क्या करते हैं लोग, उन पर 100% डिपेंड करते हैं। ये मुझे आखिरी रोड तक ले जाएगा, ये मुझे मेरी जिंदगी ये संवार देगा, मेरे गुनाह ये माफ़ करवा देगा, मेरी ख्वाहिशें ये पूरी करवा देगा। यानी जो हयात हैं उससे हम सीखें, लेकिन एक हद तक। अब देखिए, सहाबा में से 10 हैं जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि 10 को जन्नत की जमानत दी गई, गारंटी कर दिया जन्नत मिलेगी 10 को। उनमें से एक उमर बिन खत्ताब हैं कि नहीं है? उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहे हैं और उनके कपड़े देख के एक औरत से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा यह आपने बैतुल माल से अपने हक से ज्यादा लिया है। उनका खुतबा इंटरप्ट कर दिया उसने, उनकी पकड़ की, उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, नहीं नहीं ये ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। ऐसा क्यों हुआ? अगर बाकी वो जन्नत का उनको वादा कर दिया गया है और मैं उस क्राउड में बैठा होता तो मेरे जहन में तो कभी सवाल ना आता, अगर सवाल आता भी तो मैं कहता नहीं था वो तो जन्नती हैं, उनकी तो 100% पैरवी करनी है। लेकिन आप सहाबा की मिसाल देखें तो क्या देखते हैं, वो एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि नहीं, एक दूसरे की करेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों करते हैं? वो ये नहीं कहते ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, इनके बारे में पता है नबी ने क्या कहा है, इनको तो जन्नत मिलनी है, इनको नहीं, इनसे पूछोगे तुम? सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम में जिन लोगों की मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है ना, जिसमें कोई खलल नहीं है, और जो पहुंच गए, ग्रेजुएट हो गए इस रस्ते से, वो लोग सब माजी में हैं, वो सब माजी में, उनकी मिसाल हमने लेनी है। और उनमें और बाकियों में एक फ़र्क होना चाहिए। होता यह है क्योंकि हमने असरात लिए हैं और मजाहिब से, मुसलमानों ने सदियों में हमने और मजाहिब से असरात लिए, और उसमें से एक असर हमने ये भी लिया कि हमने ये अकीदत मंदी शुरू कर दी कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के ऐसे पहुँचे हुए बंदे हैं, ऐसे औलिया हैं अल्लाह ताला के, कि बस अगर उनके साथ मेरी सोबत हो जाए ना तो बस जन्नत ही जन्नत है। और यानी उनका एक ख़ास मकाम है, वो उस मकाम पर, वो हिदायत के उस रास्ते पर उनकी गारंटी हो चुकी है, अब ये गारंटीड शख्स हमारे मोहल्ले में रहता है, तो मैंने अगर इनका हाथ पकड़ के मैं ज़रा चूम लूँ और फिर इनके इनके दस्ते मुबारक से मैं पानी पी लूँ, या तो फिर मेरी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं होता, ये और जगहों की बात कर रहा हूँ मैं। ये हज़ारों साल पुरानी गुमराही है, हमारे यहाँ नहीं होती, हम मुसलमान हैं माशाल्लाह। यही चीज़ इस्लाम तबाह और बर्बाद करने आया था। हमने अब लोग मेरे बारे में भी करते हैं, यार मेरे मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर दें, इसके लिए दुआ कर दें, इसके लिए कर दें। आप बस एक ये लफ्ज लिख दें मेरे लिए, मेरी मेरे लफ्ज से क्या हो जाए। जैसे आप अल्लाह के बंदे हो, मैं अल्लाह का बंदा हूं, जैसे आपकी कोई गारंटी नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं, ये माइक मेरे ऊपर लगा हुआ है, इससे मेरी कोई मेरा कोई रुतबा नहीं बढ़ जाता। अल्लाह को मालूम है किसका मकाम ऊंचा है, किसका मकाम नीचे है, ये तो मेरे रब को मालूम है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं, आपको इसका कोई इल्म नहीं। हमारा रवैया क्या होना चाहिए? फिर ये रवैया मैंने जब देखा ना, मेरे कुछ दोस्त थे जो हम मैं जब इस्लाम सीख रहा था और मैं मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस से गुजर रहा था, तो मेरे कुछ दोस्त थे उनके कुछ और इन्फ्लुएंसेस थे, तो एक साहब से वो सीख रहे थे, उनके वो बहुत ज़्यादा यानी पैरोकारी में वो लगे हुए थे। तो एक दफ़ा वो एक कॉन्फ्रेंस में आए, वो साहब बहुत पहुँचे हुए अल्लाह ताला के उलिया में से, तो वो चल रहे थे, उनके पीछे पीछे उनके तालिब इल्म ऐसे ऐसे चल रहे थे आधे रुकू में। मैं कहा ये कौन सा इस्लाम है, ये इस्लाम तो मैंने कुरान में नहीं सीखा, ये तो मुझे सीरत में नज़र नहीं आ रहा। सीरत में तो मुझे यह मिल रहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं सहाबा के साथ, और कोई गैर अंदर आता है, कोई अजनबी अंदर आता है, और वो अबू बकर से बात करनी शुरू कर देता है, या रसूल अल्लाह, तो अबू बकर कहते हैं नहीं नहीं नहीं वो है, यानी उनको पता नहीं चलता था कि रसूल कौन से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर बिन खत्ताब जिनको जन्नत की जमानत दी गई है, दरख्त के नीचे गदा बांध के सो रहे हैं, कोई रैंक नहीं है, कोई ख़ास कपड़ा नहीं है, कोई ख़ास लिबास नहीं कि वो एक दफ़ा वो आ गए तो फिर नूर आ गया। एक नौजवान मुझे कल मिला था रेस्टोरेंट में, कहता आपकी शक्ल पे बहुत नूर है, मैंने कहा नहीं ये क्रीम लगाई है मैंने कोई नूर नहीं है ये जो हमने बनाया हुआ है ना, कि कुछ लोग हैं जिन पे अल्लाह का बड़ा ख़ास इनाम है, बहुत ओ हो ये ओ हो ना, ये सिरात लदीना अनअमत अलैहिम इसका तोड़ है। जिन शख्सियात से हमें इम्प्रेस होना है ना, वो हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अस्हाबुल कहफ, ये वो लोग हैं जिनके बारे, ये हैं अलदीना अनअमत अलैहिम, इनके बारे में सीखो, इनसे इंस्पिरेशन लो। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपने बड़ों की और अपने बुजुर्गों की और अपने उलमा की इज्जत नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल इज्जत करनी चाहिए, उन्हें पोप नहीं बना देना चाहिए, वो एक और मज़हब है, वो इस्लाम नहीं है, वो एक और दीन है। और जब मुझे ये बात समझ आई, मेरे कुछ हलकात में, मैं जब यंग नौजवान था तो कुछ हलकात में कोई बड़े बड़े आलिम आते थे न्यूयॉर्क में ना, मुख्तलिफ जगहों से, तो लोग उनसे बड़े मुअत्तबाना अंदाज में, शेख साहब एक सवाल है, एक सवाल अर्ज कर दूँ, बस एक सवाल अर्ज कर दूँ, ये क्या हो रहा है? वो सवाल उसका वो जवाब देते तो मेरे जहन में एक फॉलो अप क्वेश्चन आता, मुझे उनका जवाब समझ नहीं आया, उनका जवाब मेरे नज़दीक कामिल नहीं था या कन्विंसिंग नहीं था, तो मैं आगे से सवाल पूछ लूँ, आपने ये बात की लेकिन आयत पे तो कुछ और बात हो रही है, तो आप इसको कैसे रिकनसाइल करते हैं? इतनी सी बात। और जो उनके सारे फैन बैठे हुए थे ना, वो क्या करते हैं पता है? पता नहीं है कौन है? जैसे एक दफ़ा हज़रत ने जवाब दे दिया तो किसी की क्या मजाल आगे से पूछने की। मैं तो समझा था मैं एक ऐसे दीन को फॉलो कर रहा हूँ जिस दीन में फरिश्ते, जब फरिश्तों को कोई बात समझ नहीं आई कि आदम को क्यों बनाया, वो तो खून बहाएगा, उन्होंने बेटोक पूछ लिया अल्लाह ताला से, आप क्या ज़मीन में ऐसी मखलूक डालेंगे जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? पूछा भी किससे? अल्लाह से। और अल्लाह ने नहीं कहा तुम किससे पूछ रहे हो, तुम्हारी ये मजाल? ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का रास्ता बगैर पूछे, बगैर क्रिटिसाइज किए फॉलो करना है और आंखें बंद करके फॉलो करना है, वो कहाँ है? वो माजी में है, वो माजी में सातन लदीना आराम था ने, वो पीछे हैं, वो अभी नहीं है। अभी हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, लेकिन हम में से कोई रास्ते की इंतहा तक नहीं पहुंचा, तो हम एक दूसरे से, हम मैं आपके फायदे के लिए, आप मेरे फायदे के लिए। और ये जब मेरे अंदर ये रवैया आ गया ना, इसको कुछ लोग बदतमीज़ी कहते हैं, मेरे नज़दीक ये इल्म का रास्ता है, इल्म का सफ़र है और हिदायत का सफ़र। अल्लाह ताला ने मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से मेरे लिए बड़े अजीब अजीब दरवाज़े खोले और दुनिया के बहुत सारे उलमा जो हैं उनसे मेरी एक्सेस हुई, उनसे बात करने का मौका हुआ। तो मैं बात करने से पहले ही मैं कह देता हूँ, सर मैं ये रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा ना, ये वीडियो पे डालना चाह रहा हूँ, मैं अपने फ़हम के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो जो जहन में सवाल आएगा मैं पूछूंगा, बदतमीज़ी लगेगी शायद आपको, लेकिन मैं फिर भी करूंगा सवाल, उन्होंने कहा यही पसंद है मुझे। और फिर मैं करता हूँ वो बात, कहते हैं फिर मैं कहता हूँ आपकी दिल में कोई तो क्यों नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती, फिर हम डिबेट करते हैं, फिर उनको मेरी बात अच्छी लगती है, कोई बात मेरी बुरी लगती है, लेकिन हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करोगे ना तो आपकी आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके फहम में इजाफा होगा। अगर आप यानी लिहाज रखते हुए सवाल ही ना पूछो, जहन में सवाल रहे, बेअदबी होती है, तो आपकी असल वफादारी इल्म से नहीं है, हिदायत से नहीं है, आपकी असल वफादारी लिहाज से है किसी के। मुझे हिदायत के रास्ते में मुझे किसी और चीज़ का लिहाज नहीं है, मुझे बस हक का लिहाज है, बस मुझे हक चाहिए। और मैं वो ये भी ऐन मुमकिन है, और बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं कोई चीज़ सीखा, मैंने कोई चीज़ सीखी, मुझे लगा कि ये सही है, दो साल बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बात सही नहीं है, और ऐन मुमकिन है कि सही नहीं है। और हो सकता है कोई चीज़ अभी मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि ये सही है, और बाद में कोई दलाइल सामने आए और कोई बात सामने आए और पता चले कि ये बात सही नहीं थी, मुमकिन है, क्योंकि इंसान से गलती होती है, इंसान सीख रहा है, और सीखने के रास्ते में गलत नतायज पर पहुंचना भी उसका हिस्सा है, उस सफ़र का हिस्सा है। लेकिन इन अल्फाज में सिरात लदीना अनअमत अलैहिम बहुत बड़ी, बहुत गहरी हकीकत मुजमर है, और ये अल्लाह ताला से जो हमारा ताल्लुक है उसको ख़राब होने से बचाया गया है इन्हीं अल्फाज के ज़रिए से, सिरात लदीना अनअमत अलैहिम। फिर दूसरी बात यह भी बता दी कि जो लोग इस सफ़र के इंतहा तक पहुँचे ना, वो इसलिए कि वो बहुत पहुँचे हुए लोग थे, कोशिश उनकी थी, लेकिन आसानी किसने बनाई, तौफीक अल्लाह ने, अनअमत अलैहिम, ये नहीं कहा सिरात अस्सालिहीन, सिरात अल-अंबिया, सिरात अश-शुहदा, वो अंबिया सालिहीन कितनी अजीम शख्सियतें हैं, लेकिन हाईलाइट क्या किया गया यहाँ पे, हाईलाइट किया गया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या किया, आसानी बनाई। अगर सोचो जरा, अगर यहाँ कहा होता, क्योंकि एक और मकाम पर कुरान में فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا, इसकी तफसीर की गई है, किन पर इनाम किया गया, नबी सिद्दीक यानी सिद्दीक जिन्होंने अम्बिया की बात को सच माना, शुहदा आप जानते हो शुहदा कौन है, सालिहीन अच्छे लोग, चार ग्रुप बताए। अगर ये यहाँ लिखा होता, कुरान ने ये बात कही होती यहाँ पर, सिरात النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, अगर इस तरह बात की होती तो असल में उनके मकाम की बात हो रही होती, अल्लाह ताला को जो उन पर इनाम है उसकी बात नहीं हो रही होती। वो तो अंबिया थे, वो तो शुहदा थे, वो तो सिद्दीकीन थे, वो तो सालिहीन थे, हम तो वो नहीं है। यहाँ कहा उनका रास्ता बताएं जिनके लिए आपने आसानियाँ की। अब इस तरह से कहा तो क्या बात सामने आ गई, मेरे लिए भी आसानी कर सकता है, उनके लिए की तो मेरे लिए भी कर सकते हैं। ऐसा रास्ता बताएं कि जब मैं इस रास्ते पर चलूँ, एक दो कदम चलूँ, तो आगे आसानी कहां से आएगी, अल्लाह की तरफ से। आउन का मतलब क्या था, आउन का मतलब क्या था, पहले कोशिश फिर मदद। यहां पहले कहा रास्ता बता दे, रास्ते पे चलूं तो आसानी कहां से आएगी, अल्लाह से आएगी। वही बात दोबारा कही जा रही है, सिरात लदीना अनअमत अलैहिम, ठीक है। अच्छा,
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। Coming up next time on Akhri Mojza.
0: तो तवक्को ये थी, हमें सीधा रास्ता दिखाएं, उसकी हिदायत दें, उनका रास्ता जिनको आप पहले भी हिदायत दे चुके, हिदायत ही तो मांगी थी, तो हिदायत याफ्ता लोगों के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन हिदायत के लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, इनाम, यानी एक तब्दीली लाई गई है कलाम के अंदर, इसको भी नोट करने की जरूरत है। सिरातल्लज़ीना हदैतहुम के बजाय सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, इससे क्या फर्क पड़ता है।
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, laysa shay'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a'i, that there is nothing more honored in the sight of Allah than supplication.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
7: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
8: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
2: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
10: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
2: This is Inspire FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
12: Assalamu alaikum and welcome to the Book Club show on Inspire 105.1 FM. My name is Imrana Mahmood and I'm really excited for today's show because we are going to be talking about general summer reading, because holidays are usually the best time, I would say, if you want to get back into reading. We tend to, if we haven't got too many plans, have a bit more spare time for hobbies. So it's always a good way to start something new. So yes, reading can be one of those things. If you wanted to, you can pick up a new skill as well. But, you know, hopefully the whole point of holidays is to have a bit of downtime, have a bit of rest of recovery. And obviously we've been enjoying some, I know it's been very hot weather, but so that might mean we're spending a bit more time indoors trying to keep in the shade perhaps. And I'm delighted to be talking to Zahra today. So I think me and my daughter, we thought actually it'd be really nice to do another show together and talk a little bit about what some of the books that we've been reading during the holidays so far. So, Asalaamu Alaikum, Zahra.
13: Wa Alaikum Asalaam.
12: How are you doing at the moment?
13: I'm good, Alhamdulillah. How are you?
12: Alhamdulillah, I'm really, really good as well. How have you been managing in this weather?
13: Yeah, it has been quite hot recently, so I've been having to put the fan on quite a lot.
12: Yeah, we've had to have the fan on a lot. And would you say that you have been spending more time indoors? Are you still managing to get out a little bit?
13: Yeah, managing to get out like when we need it, but otherwise I try and stay inside because it's quite hot.
12: Yeah, exactly. That's true. So how have your holidays been so far, just generally? What have you been up to? Anything interesting?
13: Yeah, they've been quite good so far. We went to holiday.
12: Yes, we did. Where was that, so the listeners know?
13: To Egypt.
12: And how did you find that?
13: It was really nice, but obviously it was quite hot there as well, like heat wave kind of there as well. But it was really nice because it was a lot different from the UK, like a lot more chaotic, I'd say.
12: Yeah, it was quite chaotic, wasn't it? And I guess, do you think it was actually helpful having the heat wave in the UK? It almost helped us. Did you feel it helped a little bit climatise? So why we ended up in Egypt in even hotter weather? Do you think it was helpful or not really?
13: I'd say it might have been a bit easier in Egypt because there they have like AC in most places.
12: Yeah,
13: but it was quite hot because like we were out most of the time because like we were on holiday.
12: Yeah, exactly, because we're doing lots of the sightseeing and things like that. What would you say then was maybe one of your best bits of going to Egypt?
13: I really like the nightlife there. It was really nice because it was really hot there still at night. So it was like 30 degrees there. But it was really nice because it wasn't too hot. Like the sun wasn't in your face or anything. But it was really fun because then you get to like walk around and it's quite relaxing.
12: Yeah, I guess the atmosphere, there's a bit more of an atmosphere maybe in the evenings because generally, I guess that's how society runs because obviously during the day, most people are maybe trying to avoid the heat. So everyone gets out in the evenings. And yeah, it's a kind of a nice vibe, isn't it? It's kind of quite nice and you can walk around, go shopping and, you know, go out to eat and things like that. Is that what you mean?
13: Yeah, because like even though it was like 10 o'clock, shops were still open and stuff like that, whereas you probably don't really get that in the UK.
12: Yeah.
13: Whereas like that seems quite normal.
12: Yeah, exactly. That's true. So maybe just one more question about the holiday. Obviously, Egypt's very famous for, I mean, lots of things, or one particular thing. And how did you find that?
13: We went to the pyramids, which is well known for, because it's one of the seven wonders of the world. Mm. And it was really interesting to actually go there and be there. I thought it was going to be a lot bigger, but when you saw it from like a kind of close up, it seemed a bit smaller. But when you went to like right next to the actual blocks, yeah, you realize just how big it is. And like I was probably smaller than one of the blocks.
12: Yeah.
13: So then you realize like how tall it is.
12: Yeah, exactly. For something that's from ancient times, excuse me, I guess you really get to appreciate, yeah, exactly, like in terms of architecture and how it must have been created. And would you say, because obviously you learn a lot in terms of books and learning at primary school about the Egyptians, right? Do you feel compared to when you were younger and some of the things you might have learned about the Egyptians and things like that, and then how in reality do you feel that there was much connection? Do you feel like, oh yeah, I remember learning about that, or were you able to make any connection in particular?
13: Yeah, I definitely remember like a lot of videos that I've watched before about like a lot of theories about how it was bill and like how they transport the blocks and stuff. And I'd say there's still quite a lot of mystery, even though like it's been such a long time that people have been studying it, there's still quite a lot of mystery behind it. And I think that's what makes it interesting.
12: Yeah, I think there's still a sense of intrigue, isn't there? So even when you go, you know that they're still discovering things, they're still thinking potentially about theories of what might be underneath the pyramids. And yeah, like, you know, subhanAllah, there is a lot to learn. So amazing. Okay, that's good. So we've got our conversation out of the way about holidays. Let's get to reading. So obviously today's show is about summer reading. Where do you want to start? So what are some of, let's start with the book that maybe you've most recently read. Yeah, maybe in the past like month or two.
13: Recently I just finished reading The Hobbit by J.R.R. Tolkien.
12: Amazing. Okay, so what made you pick that book?
13: I was recommended to read it, so I thought I'd give it a go because I've already read the Harry Potter series, so I thought it'd be good to start another series.
12: Oh, like, so almost like a similar genre, is that what you...
13: Yeah, because I enjoy fantasy.
12: Okay, so wait, hold on, remind me, who recommended the book?
13: Can't remember.
12: You can't remember who recommended you the book? Was this book already on the bookshelf at home, or did you kind of say to me, oh, I really want to read this book? How did that come about? Because you said someone recommended it. I'm just trying to remember who that was. Seemed to be very forgetful.
13: Someone who reads a lot in the house recommended it.
12: Oh, I wonder who that might be. Might be the person who hosts the book club show usually.
13: Yeah, maybe.
12: Oh, okay. That's fine. It's good to clarify. But actually, I have to admit that The Hobbit is the book that I actually bought maybe, I want to say 2 years ago. I also have to admit, it's not a book that I've read. And do you remember the reason I bought it is because it was actually your Nanabu who said that it's a book that he read when he was younger and he remember really liking it. And I thought, oh, you know what, if it's something that like my dad's read and he really enjoyed it, I should read it too. So I bought this book for myself and I bought one for your Nanabu, and neither of us have actually read it. So I think it's been sitting on both our shelves, but that's good. It just means that you kind of took the initiative and you've read all the Harry Potter series and you decided actually this might be a similar genre. So you've picked it up, which is fantastic. So at least it's being read by somebody. But would you say, is that a good way, you know, like maybe other people your age who might struggle to read sometimes or they're quite not sure what book to pick next? Is that a good way to do it? If you know that you're interested in a particular genre, yeah, is that a good way to pick your next book, for example?
13: Yeah, I think if you want to get into reading, I think the best thing to do is read a lot of different genres and like read a lot of different types of books. So then you understand which types you don't like and which types you actually do like and would read more of.
12: Yeah.
13: So I think that definitely helps.
12: Yeah, that makes sense. Okay, so for any listeners who don't really know what The Hobbit is about, do you want to read the blurb and then we can talk a little bit about it?
13: This is the story of how a Baggins had an adventure and found himself doing and saying things altogether unexpected. Bilbo Baggins is a hobbit who enjoys a comfortable, unambitious life, rarely travelling further than the pantry of his hobbit hole in Bag End. But his contentment is disturbed when the wizard Gandalf and a company of 13 dwarves arrive on his doorstep one day to whisk him away on a journey there and back again. They have a plot to raid the treasure hoard of Smaug the Magnificent, a large and very dangerous dragon. The prelude to The Lord of the Rings, The Hobbit has sold many millions of copies since its publication in 1937, establishing itself as one of the most beloved and influential books of the 20th century.
12: Amazing, fantastic blurb. Okay, so let's start with quite a simple question then, I guess. What did you think of it? Is it a book that you enjoyed? And why?
13: At first, I wasn't really sure of, like, whether I would like it. Obviously, I knew like a little bit before reading the book about what it would be about. But when I started reading it, I found it quite hard to like keep on reading it consistently. And I think that was because, obviously, as I said before, it's published quite a long time ago, 1937. So the writing is a bit different from like similar books I've read. They're quite different, so I think it was a bit hard to like understand it, especially because it's quite old language.
12: So would you say in that sense, actually, even though the genre is similar in terms of it's like fantasy compared to Harry Potter, it's actually a bit more, the language is a little bit more traditional, kind of old school. So in that, would you say that would be the main difference between that series and like The Hobbit?
13: I'd say that's the main difference.
12: So, but do you think is it something then is helping you? As how do you think reading a book like this, which is maybe considered more of a classic, are helping you in terms of your reading or your English language?
13: Yeah, I definitely say it's definitely developing my like language skills further, because obviously, like in English in school, obviously you have to read different texts and stuff from like different times, and like for example, like Shakespeare, and that language is really different compared to today's. And I remember reading a Shakespeare text in school, and I couldn't like understand any of it. So it's good to like start reading them more often, so then you get used to it.
12: And would you say that there's a difference, because you know there's a whole thing about how reading for pleasure, like young people don't really always get the chance because of school and the curriculum, and there's all this pressure that you have to read and then do tests and exams. What's kind of important for you that you are able to read for pleasure, like in your own time?
13: I think it's really important, because if you only read for like certain like curricular activities and not for like pleasure, then you won't be able to continue developing and like even like further in life, like you won't be able to articulate yourself as well.
12: Is that because you feel that if people only ever read for school, then as soon as school ends, they'll just stop? Like, they don't develop a love of books, you think? Is that why, or...?
13: I'd say that's why.
12: Okay, yeah, that makes sense. Okay, so give us an idea of, like, The Hobbit. What would you say are some of the bits of the storyline that you like enjoyed, or what did you think of like some of the main characters? What made The Hobbit interesting for you, that you kind of finished it, that you kind of kept going, I guess?
13: I like the overall like plot, and like even though like there were some words that I didn't understand at the time, like when I looked at the story as a whole, I quite enjoyed it, like the whole like adventure side. And I really liked, obviously, because like it's fantasy, like the whole world and like experiencing it was like really interesting. And I often liked how the author, he often made like comments as a narrator in the book, and I quite liked that. Especially there were some things that like he repeated, like Bilbo Baggins, he often used to say that it was not the first and last time that he used to think of home. And he repeats that quite often, and I quite liked how he like kept on repeating it.
12: All right, that's nice. And what would you say about, you know, like we're talking about the genre in terms of fantasy, because obviously you've got things like wizards and dwarves and dragons, and what is it about that kind of storyline and those type of stories that interest you, would you say?
13: Because I've already read like Harry Potter and stuff like that, I actually realized that it's really similar. Like they share a lot of the same like type of creatures and stuff like that, like goblins and stuff like that, and like wizards as well.
12: Yeah. So what is it that's interesting about that? Like, why not pick up a book which is, I don't know, just about the neighbor next door, go, you know, like, you know, just kind of normal life stuff as opposed to this kind of the make-believe stuff. Like, what makes you interested in those type of stories?
13: I'm interested in those types of stories because they're, like, imaginative.
12: Okay.
13: And, like, you get to, like, make your own stories as well in, like, a whole completely different world.
12: As in, because you... transports you in terms of even your own imagination, you mean? Because you kind of almost because obviously by reading you have to imagine it in your own mind, and I guess you're transporting yourself into those kind of scenarios and situations, which is and I guess it's nice to be different, because that's why I think people say books are a form of escapism, because you literally are just end up in different time, different space, different people, right? So yeah, okay, that makes sense.